0: पहला जे कर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सबको सुतक का रखिए सुतक पवेर सोए नानक सुद के मना उतरे ज्ञान उतारे तोय मोहला पहला
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखना परतरे पर तन रूप कन्नी सुत कन पाए लायत बारी खाए नानकन साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितौन रिजक संभाल।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स तंहिंखां सवाइ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन तरह आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ॿुधंदा, पोइ तव्हां अदबी गुलशन प्रोग्राम तहत भॻवान निर्दोष खां कविता पाठ ॿुधंदा, हुन जो पोइ ख़ासि ख़ासि ख़बरूं

तव्हां भगत कंवर राम साहिब जे में सदाबहार आवाज़ ॿुधी रहिया हुआ। हींअर आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। ऑपरेशन सिंदूर जी पहिरीं सालगिरह ते भारत देश जे सशस्त्र सेना खे श्रद्धांजलि अर्पित करे थो, जिन 22 अप्रैल 2025 जे पहलगाम आतंकी हमले खां पोइ पंहिंजे काबिलियत जे सबूत ॾिनो। पाकिस्तान ज़रिए मदद हासिल कयल हमले वारनि आतंकियुनि वैसरानवादी ते हमलो कयो। माण्हुनि खां उन्हनि जो धर्म पुछी उन्हनि खे मारियो वियो, जंहिंजे नतीजे तौर 26 माण्हू मरी विया। इहा सांप्रदायिक हिंसा खे भड़काइण जी हिकु साफ़ कोशिश हुई। इहो सरहद पार हमलनि खां भारत खे अंदरां विरहाइण जे तरफ़ सीधो इशारो ॾेखारे थो। हिन जे जवाब में भारतीय सशस्त्र सेना 7 मई 2025 ते सुबुह जो 1:44 ते ऑपरेशन सिंदूर शुरू कयो, जंहिं में पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे हेठि आयल जम्मू ऐं कश्मीर में आतंकी इलाक़नि खे निशानो ठाहियो, जितां भारत जे ख़िलाफ़ आतंकी हमलनि जी योजना ठाही ऐं हुन मुश्किल कम खे अंजाम ॾिनो वियो। भारतीय सेना, नौसेना ऐं वायुसेना हिन चुनौती भरे कम खे पूरो करण में प्रोफेशनलिज़म, साहस, हिमत ॾेखारे मिसाल क़ाइमु कयो। भारतीय सेना जे कब्ज़े हेठि जम्मू ऐं कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे पंजाब सूबे में 9 आतंकी कैंप ते हमलो कयो वियो। ऑपरेशन में 100 खां वधीक आतंकवादी मारिया विया, जिन में IC-814 जो हिकु हाईजैकर बि शामिल हो। बहावलपुर ऐं मुरीदके ऐं ॿियनि हंधनि ते बदनाम आतंकी कैंप तबाह कयूं वयूं। मुरीदके उहो आतंकी इलाइक़ो हो जिते अजमल कसाब ऐं डेविड हैडली जो कैंप हो। भारतीय वायुसेना कामयाब हमले जा सबूत वापसि आणण लाइ आसमान ते नज़र रखियो। भारतीय वायुसेना जा निशान मुरीदके, भवालपुर ऐं ॿिया हंध पिण हुआ। गहरे सोच वीचार योजना अनुसार ऐं नतीजे ज़रिए भारत सभिनी 9 आतंकी कैंप खे सीधे हमले ज़रिए पूरी तरह तबाह कयो ऐं भारत खे कंहिं बि क़िस्म जे नुक़सान खां बचायो। हथियारबंद फ़ौजनि पाकिस्तान में तबाह थियल आतंकी कैंप जी तफ़सीली ऐं ग्राफ़िक तस्वीरूं शेयर कयूं। भारतीय वायुसेना असांजे सरहदुनि जे मज़बूती हवाई सुरक्षा पिणु बरक़रार रखियो। 7, 8 ऐं 9 मई ते पाकिस्तान असांजे शहरी ऐं फ़ौजी इलाक़नि ते निशाने ते रखण लाइ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV लॉयटरिंग म्यूनिशन ड्रोन लॉन्च कया। उन्हनि खे कामयाबीअ सां ख़तम कयो वियो। असांजे शहरी या फ़ौजी स्टेशन खे को बि नुक़सान न पहुतो। हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं भारत आतंकियुनि खे निशानो ठाहियो, पाकिस्तान भारतीय शहरुनि खे निशानो ते रखियो। भारत लाहौर, गुजरनवाला, सरगोधा, चकलाला, रहीम यार खान, सखर ऐं मरी में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार, कमांड सेंटर, गोला बारूद ऐं लॉजिस्टिक डिपो खे बि तबाह कयो। पाकिस्तान हिकु फियर्स ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन कैंप शुरू कई। इन अधूरी कहाणी खे ऐं ग़लति प्रोपेगेंडा सां भारत खे निशाने ठाहिण जी कोशिश कई। पाकिस्तान जो मक़सदु सच खे तोड़े मोड़े पेश करणु हो। आलमी जनता खे गुमराह करणु ऐं ग़लति ॼाण जे मुहिम ज़रिए पंहिंजी जाली बयान खे अॻिते वधाइणु हो। भारत हक़ीक़तुनि सां पंहिंजी योग्यता अनुसार जवाब ॾिनो। मज़बूत डिजिटल निगरानी पिण रखी। भारत ग़लति मालूमात जी जंग लाइ हिकु शांत ऐं सुनियोजित नज़रिए अपनायो। ऑपरेशन सिंदूर जे असराइते खे सही तरीक़े सां सभिनी अॻियां आंदो। सनसनी खेस खे बदिरां रणनीति जे नतीजे ते ध्यानु ॾिनो। भारतीय अफसरनि पाकिस्तान में क़ाइम अकाउंट्स में इस्तेमालु थींदड़ हेरफेर खे बेनक़ाब कयो, जिन मां केतिरा ई हाणे अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी जांच हेठि आहिनि। ऑपरेशन सिंदूर भारत जे फ़ौजी ऐं स्ट्रेटेजिक ताक़त जो हिकु अहम सबूत हो, जेको फ़ौजी ऐं गैर फ़ौजी ज़रियनि जे मेलाप ज़रिए अमल में आंदो वियो। हुन गुण तर्फ़ी ऑपरेशन हासिल कयल तरीक़े सां आतंकी ख़तरनि खे बे असर कयो, पाकिस्तान आक्रमण खे रोकियो ऐं आतंकियुनि जे ख़िलाफ़ भारत जे ज़रिए टॉलरेंस पॉलिसी जे मज़बूती सां लागू कयो। हिन ऑपरेशन दरमियान अंतर्राष्ट्रीय हिमायत हासिल कंदी स्ट्रेटेजिक जज़्बत बरक़रार कयो। देश जे संकट जे हुन वक़्त में सिर्फ़ हल न पर क़ाबिल ज़िक्र अॻवानीअ जी ज़रूरत हुई। हुन चैलेंज जो मुक़ाबिलो करण लाइ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अॻियां आया, जंहिंजो ऑपरेशन सिंदूर में फ़ैसिलो कंदड़ किरदारु अॼु जी इतिहास में भारत जी सभ खां वधीक हिमत वारो हो। अॻ में ई
तय कयल राजनीतिक दौरे ते भायरन मुल्क होण खां पोए भी श्री मोदी जी तेजी सां कमान संभाले एक जवाब कार्रवाई जी रूपरेखा डिनी जेको स्ट्रेटेजिक संयम जी सुजाणप ए फैसलो करण जो तालमेल हो हुन तेजीअ सां अमल करण लाइ तमामु घणो दबाव हेठ हुअण खां पोइ बि ज़िक्र संयम जो मिसाल ॾिनो ऐं यकीन ॾियारियो त हर कदम भले उहो सिंधु जल संधि हुजे हुन जे मुअतल करण खां वठी फौजी कार्रवाई ताईं चङी तरह योजना मुजिब हुजे ऐं सही वक़्त ते हुजे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिंधु जल संधि खे मुअतल करण जो फ़ैसिलो हिकु इतिहासिक क़दम हो जंहिं न रुगो ॾेखारियो त पाकिस्तान जे फ़ाइदनि खे नुक़सान पहुचायो पर भारत खे बि फ़ाइदो पहुचायो। हुन हिकु नओं देश जी सुरक्षा जो नज़रियो क़ाइमु कयो, भविष्य में कंहिं बि आतंकी हमले खे जंग जी कार्रवाई समुझायो वेंदो। इन आतंकियुनि ऐं उन्हनि खे आसरो ॾींदड़ देशनि जे विच में ग़लति फ़र्क़ु ख़तमु करे छॾियो। 12 मई 2025 ते देश खे संबोधित कंदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चयो त ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ़ हिकु नाले न आहे पर मुल्क जे लखे माण्हुनि जे जज़्बात जो अक्स आहे ऐं इंसाफ़ जो हिकु अण टुटल वचन आहे। हुन चयो त भारत पंहिंजी सरहदुनि ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी सुरक्षा लाइ मज़बूत कदम खणण लाइ वचनबंध आहे। जंग जे मैदान में असां हमेशा पाकिस्तान खे हरायो आहे ऐं ऑपरेशन सिंदूर हिकु नयो आयाम शामिल कयो आहे। जेकॾहिं भारत ते को आतंकी हमिलो थियो त योग्य जवाब ॾिनो वेंदो। भारत कंहिं बि न्यूक्लियर ब्लैकमेल खे बर्दाश्त न कंदो। भारत आतंकियुनि जे ठिकाणनि ते सही ऐं फ़ैसिले सां हमिलो कंदो। भारत आतंकियुनि जी स्पॉन्सर कंदड़ ऐं दहशतगर्दी जे मास्टर माइंड जे विच में फ़र्क़ न कंदो। नई दिल्ली भारत ऐं असांजी शहरनि जे कंहिं बि ख़तरे खां बचाइण लाइ फ़ैसिलो करण वारे क़दम खणंदी रहंदी। भारत जो मौक़िफ़ बिल्कुलु वाज़ह आहे, दहशतगर्दी जे ॻाल्हियूं गॾु न था हली सघनि, दहशतगर्दी सां ऐं वापार गॾु न था हली सघनि, पाणी ऐं रथ गॾु न था हली सघनि। ऑपरेशन सिंदूर जा नतीजा उन जे असर बाबति घणो कुझु ॿुधाइनि था। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

सब छोन लाट ललाट ते चमके थी। हर शख्स अमन खे गोले थो। हर

मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में थी, जोत जले हर हंध सागी, छो हिकु टोड़े ऐं ॿियो जोड़े सड़े।

खां पुछ विझी मूं पंहिंजो आहीने में इंसान कड़े थो कीने में। चंद ग़ज़ल पेश आहिनि। ॾिसां थो जंहिंखे सुम्हियल थो लॻे, ॾिसां थो मां जंहिंखे सुम्हियल थो लॻे, जॻायां त मां कंहिंखे कंहिंखे जॻायां, जॻायां त मां कंहिंखे कंहिंखे जॻायां। रोए थो हिते रोअणा सभु कोई पंहिंजा, रोए थो हिते रोइणा सभु कोई पंहिंजा, खिलायां त मां कंहिंखे कंहिंखे खिलायां, जॻायां त मां कंहिंखे कंहिंखे जॻायां। लॻनि था रुठल यार हिक ॿिए खां सभु, लॻनि था रुठल।

अल यार हिक बी खां सब मञाया त मां कंहिंखे मञाया जगाया त मां कंहिंखे जगाया टुटी था वञन बे सबब हित जे नाता टुटी था वञन बे सबब हित जे नाता मिलाया त मां कंहिंखे मिलाया जगाया त मां कंहिंखे जगाया रखन बे वफ़ाई सभई था ज़हन में रखन बे वफ़ाई सभई था ज़हन में निभाया त मां कंहिंसां निभाया जगाया त मां कंहिंखे जगाया उञायल लॻन था हवस जा मिड़ेई उञायल लॻन था हवस जा मिड़ेई प्यारिया त मां कंहिंखे प्यारिया प्यारिया त मां कंहिंखे प्यारिया गमन जी हिते इंतिहा कान आहे गमन जी हिते का इंतिहा कान आहे समाया त कंहिंखे समाया समाया त कंहिंखे समाया हाणे होश हर को हथोड़ा पुठीअ में हाणे होश हर को हथोड़ा पुठीअ में संभालिया त कंहिंखे संभालिया ॾिसां थो मां जंहिंखे सुमिल थो लॻे जगाया त मां कंहिंखे जगाया रोए थो हिते रोइण सभु कोई पंहिंजा खिलाया त मां कंहिंखे खिलाया नंढो ग़ज़ल आहे भरे सोच में ज़हर भरे सोच में ज़हर परेशान थियो था रही दूर महफ़िल खां हैरान थियो था भरे सोच में ज़हर परेशान थियो था रही दूर महफ़िल खां हैरान थियो था उझाणल खणी दीप मंज़िल था ॻोल्हियो उझाणल खणी दीप मंज़िल था ॻोल्हियो अंधेरनि पुठियां छो ई ग़लतान थियो था अंधेरनि पुठियां छो ई ग़लतान थियो था भरे सोच में ज़र परेशान थियो था रहाकू असां दर्द जे घर जा आहियूं रहाकू असां दर्द जे घर जा आहियूं तव्हां छो मगर उन जा महिमान थियो था तव्हां छो मगर उन जा महिमान थियो था रही दूर महफ़िल खां हैरान थियो था भरे सोच में ज़हर परेशान थियो था अञा लूह लुक जी जलायो न आहे अञा लूह लुक जी जलायो न आहे मगर होश ख़ातिर छो हैवान थियो था मगर होश ख़ातिर छो हैवान थियो था भरे सोच में ज़हर परेशान थियो था रही दूर महफ़िल खां हैरान थियो था उझाणल खणी दीप मंज़िल था ॻोल्हियो अंधेरन पुठियां छो ई ग़लतान थियो था भरे सोच में ज़र परेशान थियो था ॿियो ग़ज़ल आहे मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी चांदनीअ में छो ॿरां थो हर घड़ी चांदनीअ में छो ॿरां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी आरसीअ में थो ॾिसां ख़ुदि खे जॾहिं आरसीअ में थो ॾिसां ख़ुदि खे जॾहिं ओलड़े वांगुरु लुछां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी घर जूं दीवारूं रखियमि मज़बूत पर घर जूं दीवारूं रखियमि मज़बूत पर कंहिं न कंहिंखां छो रिजां थो हर घड़ी कंहिं न कंहिंखां छो रिजां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी चांदनीअ में छो ॿरां थो हर घड़ी हुन किनारे कुझु न अहिड़ो थो ॾिसां हुन किनारे कुझु न अहिड़ो थो ॾिसां पोइ बि पहुचण छो घुरां थो हर घड़ी पोइ बि पहुचण छो घुरां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी ओलड़े वांगुरु लुछां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी छो सुवालनि ऐं जवाबनि जे पुठियां छो सुवालनि ऐं जवाबनि जे पुठियां पाण खे उलझे रखां थो हर घड़ी पाण खे उलझे रखां थो हर घड़ी मां जीअण जे चाह में मां जीअण जे चाह में जीअंदो रहियुसि मां जीअण जे चाह में जीअंदो रहियुसि तब जीआ ऐं छो मरां थो हर घड़ी तब जीआ ऐं छो मरां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी चांदनीअ में छो भरां थो हर घड़ी दिलि न वरती कंहिं कॾहिं ग़मख़ार थी दिलि न वरती कंहिं कॾहिं ग़मख़ार थी माछ सभ जी दिलि वठां थो हर घड़ी माछ सभ जी दिलि वठां थो हर घड़ी मेण वांगुरु छो रिजां थो हर घड़ी होश खे बेहोश था माण्हू चवनि
होश खे बेहोश था माहू चवन।

हेर अचो त खास खास खबरूं ॿुधूं। भारत ऐं वियतनाम मञियो आहे त व्यापार सीड़प ऐं तकनीकी भाईवारी खे वधायो वेंदो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐं यात्रा ते आयल वियतनाम सदर तोलाम ॿिन्ही मुल्कनि जे गडि॒यल संस्कृति खे जिंदा रखण लाइ घणियुनि कार्यवाहियुनि जो ऐलान कयो। ख़बर मिली आहे त अमरीका ऐं ईरान तकरार खे ख़तम करण लाइ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में चूरपुर खे सवलो बणाइण लाइ हिकु इक़रारनामे जे वेझो पहुता आहिनि। अमरीका फ़ौज चयो आहे त गल्फ ऑफ ओमान में हुननि हिकु ईरानियन फ्लैग ऑयल टैंकर खे पंहिंजे कब्ज़े में आंदो आहे। ताशकेंत में अंडर 15 एंड अंडर 17 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर 27 मेडल खटिया आहिनि।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा व्यापार स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार निवेश रक्षा ऊर्जा विकास सहयोग स्वास्थ्य क्षमता निर्माण संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. Most of the positions in the cabinet are likely to be given to familiar faces from BJP and JDU. However, a few new faces may also be included. From JDU, the name of Nishant Kumar is being discussed. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shivendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North Chobis Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to Kolkata Hospital in critical condition. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart, Tô Lâm, at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced, comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. Yesterday, India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tô Lâm in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
1: भारत और वियतनाम का bilateral trade पिछले एक दशक में double होकर 16 billion dollar तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे 25 billion dollar तक पहुंचाने के लिए

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना लवली चंद्रा द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, आपको भी किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना। आपसे मिलने आ गई हूँ आपकी दोस्त आरती कौर, कहते हुए गुड मॉर्निंग कि अब सुबह हो गई है और एक सुबह सुनहरी आप सबका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम भरते हैं आपकी सुबह में ताजगी और उम्मीद के रंग। और इसी उम्मीदों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो आप सबकी भी गुड मॉर्निंग हो गई होगी और नहीं हुई है तो जाग जाइए क्योंकि मैं आप

दोस्तों जी हाँ, हर सुबह लेकर आती है एक उम्मीद की किरण, हम सब के दिलों में एक उम्मीद जगाती है। और दोस्तों अगर बात करें तो एक मेरे जहन में बात आ रही है कि मैंने कहीं पे सुना था कि उम्मीद वो पंछी है जो अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस कर लेता है। और हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा अंधेरा आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ यही खत्म हो गया है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन उस वक्त आप इस सूरज की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि ये शाम को जब डूबा था तो रात को लाया था, लेकिन जब सुबह उगा है तो आपके लिए सुबह और उम्मीद की सौगात लाया है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि रात आती है लेकिन उसके बाद सवेरा भी आता है। सूरज डूबता है तो ये इशारा भी करता है कि मैं डूबा जरूर हूँ लेकिन कल फिर से वापस आऊंगा आप सबकी जिंदगी में उजाला करने के लिए। तो इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आए तो डरिए मत, क्योंकि वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है और उनसे लड़कर जब आप बाहर आएंगे तो एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा होगा।

तो दोस्तों एक खूबसूरत से गीत के साथ एक और खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए हाजिर है, लेकिन उसके साथ हाजिर है एक प्यारी सी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप सबके लिए। भाई हम सब की जिंदगी में ऐसा तो होता ही है कि हम सब कभी न कभी दुखों के फेर में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब हमसे नहीं होगा। तो चलिए उसी आपके अंदर की जो तकलीफ है उसको मिटाने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक 70 साल के बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि दादाजी आप इस उम्र में भी आप इतने ऊर्जावान रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्या मतलब आपका शरीर टूट रहा है, आपकी एज हो गई है, काफी सारी चीजें तो आप बाहर आ चुके हैं और अब शायद वक्त आ रहा है क्योंकि काफी लंबा सफर आप तय करके आ चुके हैं, इसके बावजूद आप खुश रहते हैं, ऐसा भी क्या मिल गया आपको? तो दादाजी मुस्कुराए और बोले बेटा मेरे पास ना दो अलमारियां हैं, एक में मैं अपनी परेशानियां और दुख रखता हूँ और दूसरों में मैं अपनी उम्मीदें रखता हूँ। हर रात सोने से पहले मैं दुख वाली अलमारी को ताला मार देता हूँ और जैसे ही सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं उम्मीद वाली अलमारी खोलता हूँ। तो कुछ समझ में आया आपको? सीधी सी बात है दोस्तों, परेशानियां सबके पास हैं। अगर आप लोगों से सामने से पूछेंगे कि भाई कैसे हो तो वो कहेगा कि बढ़िया, लेकिन जब आप उसको अंदर से जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारी परेशानियों के पीछे पड़ी है, लेकिन अगर परेशानियों के बाद भी उसके चेहरे पे मुस्कान है तो समझ लीजिए वो जीत गया है, क्योंकि वो अपनी उम्मीद के साथ जिंदा है और जिंदगी में जिंदा वही रहता है जो अपनी उम्मीद की अलमारी को खुला रखता है। अगर आपकी उम्मीद खुली है, उसकी अलमारी खुली है और आपके मन में एक तकलीफ आने के बाद भी ये है कि नहीं ये हो गया कोई बात नहीं, मैं इस प्रॉब्लम से निपट ही जाऊंगा, मैं इस वक्त से निकल ही जाऊंगा, अगर आप इस उम्मीद से जीते हैं तो यकीन मानिए आप सिकंदर बन चुके हैं।

जी हाँ, जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आपके सामने ऐसे आएंगे जहाँ पर आपके पैर लड़खड़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दौड़ते जाएंगे और आप अपने मन में ये उम्मीद जगा के रखेंगे कि नहीं, मैं यहाँ तक पहुँचूंगा या पहुँचूंगी जरूर, मुझे ये पाना है और पाके दिखाना है, तो यकीन मानिए कि कोई आपको रोक नहीं सकता और आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। और जो इंसान हार कर भी जीत जाता है उसे सिर्फ बाजीगर ही नहीं कहते, उसे सिकंदर भी कहते हैं, क्योंकि हार और जीत हमारे अंदर होती है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप हार मान लेते हैं बहुत आसानी से, या आपको लगता है कि नहीं, ये तो एक चैलेंज है और इसे पूरा करके तो दिखाना ही होगा। तो बस, और अगर हार भी जाते हैं, अगर आपने सोचा है कि आपने ये चीज पानी है लेकिन वो किसी वजह से नहीं भी मिल पाई, तो भी आप ये सोचिए कि आपने वहां तक जाने के लिए जो कोशिश की थी वो भी एक जीत से कम नहीं होती, क्योंकि कई बार लोग बीच में ही सफर छोड़ देते हैं। लेकिन जो अपने मन में उम्मीद जगाकर वहां तक पहुंचते भी हैं, समझ लिए, वही सिकंदर कहलाते हैं।

तो दोस्तों, आप जब भी आज अपने घर से निकलें, चाहे ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए या अपने किसी सपने की तलाश में, तो उसे पूरा करने के लिए निकलें तो अपनी जेब में पैसों के साथ साथ थोड़ी सी उम्मीद बांधकर जरूर ले जाइएगा, क्योंकि आप जरूर गिरेंगे लेकिन गिर के उठना बहुत जरूरी है। आप सीखेंगे हारने के बाद भी, और आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो अपने सपनों की तलाश में सिर्फ निकलना नहीं है बल्कि अपने सपनों को मुट्ठी में कर लेना है। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, और वो कोशिश पूरी तभी होगी जब आपके साथ बंधी होगी एक उम्मीद की चाबी।

और दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे मुलाकात जरूर होगी। और आपके लिए छोड़े जा रही हूँ एक उम्मीदों से भरा हुआ खूबसूरत सा गाना। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो एक हारा हुआ इंसान अगर है तो वो फिर से उठ खड़ा होगा एक उम्मीद के साथ कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो बस इस गीत को सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वादा कीजिए कि आप अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा

0: सियासत राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने

0: शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉ जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000

0: with her tiny offspring in the Aravali scrublands at the doorstep of Delhi, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. Bengal BJP leader Subhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना पार्टी लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का मुंहतोड़ जवाब था। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम मुजाहरा था, जिसे फौजी और गैर फौजी जराये के इश्तराक से अंजाम दिया गया। इस कसीर जैती ऑपरेशन ने दहशतगर्दाना खतरात को असरदार तरीके से नाकारा बना दिया। पाकिस्तानी जारियत पर रोक लगाई और दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया। इस ऑपरेशन के दौरान बैनुल अक्वामी हिमायत हासिल करते हुए स्ट्रेटेजिक तहम्मुल को बरकरार रखा गया। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और इसका मंसूबा बनाने वालों को सजा देने के लिए चलाया गया था, ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज ने दहशतगर्दी के मंजरनामे का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुतादिद दहशतगर्द कैंपों और तरबियती मकामात की निशानदेही की। ये ऑपरेशन अपनी कामयाबी की खुद गवाही देता है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के 9 बड़े कैंपों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के 11 फजाई अड्डों पर हमला किया गया और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। ये हमले बहुत शदीद थे और भारत ने उन्हें पेशा वराना अकदार और तामुल से अंजाम दिया, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना अहदाफ को भी निशाना बनाया गया था और आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया गया। इस भारी नुकसान के बायस पाकिस्तान जंगबंदी पर मजबूर हो गया। नई दिल्ली ने यह ऑपरेशन न सिर्फ कामयाबी के साथ अंजाम दिया, बल्कि इससे भारत की फौजी ताकत और इसकी तीनों अफवाज, भारतीय फजाई फौज, भारतीय बरी फौज और भारतीय बहरिया की मरबूत कार्रवाई का भी मुजाहरा हुआ। इस ऑपरेशन ने जदीद दिफाई निजामों की बरामद में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों को भी उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त

0: मौकिफ और उसकी तबाहकुन फौजी ताकत का इजहार है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें पाकिस्तान की शय पर होने वाली दहशतगर्दी पर भारत की बरवक्त तो मौसर जवाबी कार्रवाई को पेश किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क की पुख्ता जवाबी कार्रवाई को उजागर किया है और मुल्क के इक्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज़ के तई अपने अज़्म का इआदा किया है।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला फौज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ला फौज की जुरतमंदी, हौसलामंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई, बेमिसाल दुरुस्ती, बाहमी हमाहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाईयों के लिए एक नई मिसाल कायम की। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और एनडीए के कई सीनियर लीडरान आज से पहर पटना में गांधी मैदान में होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: काबीना में तौसी साबिका हुकूमत में अपनाए गए फार्मूले की बुनियाद पर की जा रही है। उम्मीद है कि तकरीबन बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 असेंबली अरकान वज़रा की हैसियत से हलफ लेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक असेंबली मेंबर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तवक्को है कि काबीना में बेशतर ओहदे बीजेपी और जेडीयू के जाने पहचाने मेंबरों को दिए जाएंगे। अलबत्ता कुछ नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। जेडीयू से निशांत कुमार के नाम पर भी बहस जारी है। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वालों में एलजेपी रामविलास के संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है, जबकि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एमएलए स्नेह लता को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। केरलम में कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज तिरुवनंतपुरम में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस की क्यादत वाले यूडीएफ ने रियासत की 140 रुकनी असेंबली में 104 सीटें जीती हैं और ये रियासती गवर्नर के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे मुलाकात करेगा। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, जो तमिलनाडु की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, इस वक्त चेन्नई में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में शिमाली परगना जिले के मध्यम ग्रम में नामालूम हमलावरों ने बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी साथी चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मोटरबाइक पर सवार हमलावरों ने कल रात दोहारिया में उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ को शदीद जख्मी हालत में एक मकामी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनका ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गोलियां लगने से जख्मी हो गया और उसे जख्मी हालत में कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। चंद्रनाथ का ताल्लुक मशरिकी मिदनापुर से था और वो काफी तवील अरसे से मध्यम ग्राम के रिहायशी थे और वो बीजेपी उस टीम का हिस्सा थे जिसने भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के लिए काम किया था। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक करने की तहकीकात शुरू कर दी है। डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी पहले ही बरामद कर ली है। बताया जाता है कि हमलावर 4 बाइक पर सवार होकर आए थे। बीजेपी के लीडरों ने इस बहिमाना हरकत के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मौरिदे

0: इल्जाम ठहराया है। कांग्रेस, बाएं बाजू और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के जाति मुआविन को हलाक किए जाने की मजम्मत की है। इसी दौरान बीजेपी के एक दूसरे कारकुन रोहित राय को शिमाली 24 परगना जिले के बासिरहाट में गोली मार दी गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगरबी बंगाल में नौमंतखब बीजेपी की हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के कई वजराए आला शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर शमिक भट्टाचार्य ने जोर देते हुए कहा है कि अगर ममता बनर्जी वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा नहीं देती हैं तो हलफबरदारी की तकरीब आईनी तकाजों के मुताबिक पूरी सख्ती से अंजाम दी जाएगी। अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मुसवदे पर बातचीत सरगर्म अमल दिखाई देती है। 14 प्वाइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक वसी तर समझौते की जानिब मुजाकरात हो सकें। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरतहाल को कंट्रोल में बताया है, लेकिन खबरदार किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली जराये के मुताबिक वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने मुजाकरात की पेशरफ के सिलसिले में अमरीकी एहलकारों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जुनूबी नवाह में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की है। जंगबंदी के बाद से लबनान की राजधानी में इस तरह का यह पहली फौजी कार्रवाई है, इससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। फ्रांस ने आबनाई हुरमुज को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहरे अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डी गाल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसके साथ इटली और डच का जंगी जहाज भी है, जुनूबी बहरे अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि एक बार सूरत हाल मुस्तहकम होने या तनाज़ हल होने की सूरत में आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राह हमवार की जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में कमांडरों की दूसरी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दो रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है नए शोबों में फौजी सलाहियत ने अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। वजारत दिफा ने कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस साइबर खला और इदराकी जंग के उभरते हुए शोबों में दरपेश चैलेंजों का जायजा लेने और एक मजबूत मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग और फैसला कुन बरतरी रखने वाली फोर्स की सलाहियतों की तरक्की के लिए लाए अमल फराहम करेगी। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगी, जिसमें 35 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का इम्कान है। इस चैंपियनशिप का अहतमाम दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुश्तरक तौर पर किया गया है। चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनाकिद होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली की खेलों की बैन अलावामी तकरीबात की मेजबानी करने की एक तवील तारीख रही है और आइंदा होने वाली चैंपियनशिप दुनिया के खेल के नक्शे में दिल्ली शहर की हैसियत और वकार को मजीद मुस्तहकम करेगी। इस चैंपियनशिप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, कीनिया, जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के मुल्कों के टेबल टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कोनेन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वियतनाम के सदर तोलाम के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, भारत और वियतनाम ने नायाब मादनियात, दिफा, काबिले तजदीद तवानाई और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 12 अहम शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किये। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक साइंस और सेहत के शोबों के लिए भारत और जापान ने कई अहम मुआहदे किये। इसी अखबार ने भारत और अलजजायर के दरमियान दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक होने की भी खबर दी है।
0: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना उस्ताद जावेद अली खान द्वारा गायन राग जौनपुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: आज जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा समाज के, देश के और व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, वहीं एक बड़ी चुनौती उभर रही है विद्यार्थियों के लिए, जब वो अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए, उसमें स्थायित्व के लिए एक कैरियर के रूप में किसी विषय का चुनाव करते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पर्याप्त डिग्री, आवश्यक डिग्री के बावजूद लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या कारण हो सकते हैं उसके? क्या रोजगार की कमी है या निपुणता की कमी है, या उन्होंने अपनी निपुणता के अनुसार सही विषयों का चुनाव नहीं किया है? इस सब को दूर किया जा सकता है अगर एक वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, उसको उनको सही समय पर सही जानकारी देने वाले मिले या वो उन लोगों तक पहुँचे। कैरियर काउंसलिंग का मार्गदर्शन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और खास करके रोजगार प्राप्त करने में किस तरह एक सही कैरियर काउंसलर आपको मार्ग दिखा सकता है, उसका महत्व किस तरह से बढ़ जाता है विषयों के चुनाव करने में, और उस समय लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, उनके माता पिता को भी, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं मीनाक्षी व्यास जी। मीनाक्षी व्यास जी एक अनुभवी शिक्षा विशेषज्ञ है और उनकी अपनी विशेषज्ञता है, लंबा अनुभव है खास करके मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग में, और ये R&R एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली के निदेशक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। मीनाक्षी व्यास जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और बातचीत करने के लिए मुझे सक्षम समझा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैक्षणिक उत्कृष्टता तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात होती है व्यक्तित्व का विकास। क्योंकि शैक्षणिक उत्कृष्टता के बावजूद बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के विकास के अभाव में अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं, उचित रोजगार नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा और कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें विज्ञान, वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से उनके लिए लाभकारी हो सकता है?
4: देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मतलब यही नहीं है कि स्टूडेंट को उनको गाइड करना कि हाँ जी आप ये करियर चूज कर सकते हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को वो डायरेक्शन या एक वो काउंसलिंग दे सकें जो उनके आगे जाके भविष्य के लिए एक कारगर साबित हो, मतलब उनको एक अच्छा रोजगार मिल सके, जो ये समझ सके कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है, उनके अंदर क्या कौशल है, और ऐसे कौन से कौशल उनको डेवलप करना चाहिए जो आगे जाके उनको एक अच्छा रोजगार दिला सके। तो करियर काउंसलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स को उनकी रुचि और उनकी काबिलियत के हिसाब से एक सही करियर चूज करने में गाइड करना। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय हम स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, और उस काबिलियत को पूरा करने के लिए हम एक जो गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में, उसको हम एक स्ट्रक्चर काउंसलिंग के जरिए भरते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर के प्रति एक क्लियर विजन और एक क्लियर दिशा मिल सके।
3: ये तो अच्छी बात है कि आप जो है युवाओं को सही समय में मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन एक तो है कैरियर काउंसलिंग और उसका अपना महत्व है खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि विद्यार्थियों को सही कैरियर चुनने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? और जब आप किसी विद्यार्थी को एसेस करते हैं, उसकी क्षमताओं को या उसकी रुचि को पहचानने

0: की कोशिश करते हैं तो क्या क्या तरीके अपनाती हैं?
1: इसके लिए हम कुछ वैज्ञानिक तरीके और तकनीकी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स के हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट और उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उनसे ये असेस करते हैं कि उनमें क्या क्षमता है। सपोज कोई स्टूडेंट है जो वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बजाय इसके कि हम उसको किसी कॉम्पिटिशन या एक मैथमेटिक्स के करियर से जोड़े, उनको इंजीनियरिंग और आईटी का करियर गाइड करें, इससे बेहतर है कि उसको हम एक लिबरल स्टडीज की तरफ गाइड करें। तो हम अपने साइंटिफिक तरीकों से उनकी काबिलियत को पहचानते हैं और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए उनको पहचानते हैं और असेस करते हैं, एनालाइज करके फिर उनको एक राइट डायरेक्शन देते हैं।
0: तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, इसको कैसे आप परफॉर्म कराते हैं?
1: सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी आप इंस्टीट्यूट में या किसी भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी होता है और आप 1-to-1 भी काउंसलिंग के जरिए कर सकते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना सक्षम है मैथमेटिक्स में, कितना सक्षम है इंग्लिश में, कितना सक्षम है क्रिटिकल थिंकिंग में और आपके एप्टीट्यूड्स में। लाइक जो भी हम एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो भी तथ्य यूज करते हैं, तो उसके जरिए हमें उसके पूरे पर्सनैलिटी को समझने की क्षमता मिल सकती है या जानकारी पूरी मिल सकती है।
0: अब जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट इसका महत्व कितना होता है, खास करके जब आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी युग में विद्यार्थियों को आना है, चुनौतियों का सामना करना है, तो उनको किन किन कौशलों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
1: देखिए, स्किल डेवलपमेंट करियर काउंसलिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इससे स्टूडेंट को जॉब मार्केट की डिमांड के हिसाब से जरूरी स्किल समझने की क्षमता मिलती है। इन स्किल्स को डेवलप करने से कैंडिडेट जो है या जो स्टूडेंट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाता है और उसे मार्केट में अच्छी जॉब मिलने के या अच्छी रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से स्किल है जिनसे उनको एक अच्छा रोजगार मिल सके, उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि कौन कौन से स्किल उनको अपने में डेवलप करने चाहिए जिससे उनको एक अच्छा रोजगार और एक अच्छी जॉब मार्केट में एक वैल्यू मिल सके। तो वो स्किल है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपका वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऐसे स्किल हैं जो आजकल के एम्प्लॉयर्स अपने कैंडिडेट्स में चाहते हैं कि ऐसे स्किल वाले कैंडिडेट मिले जो उनके आगे जाके उनके काम में बढ़ोतरी कर सके। तो ऐसे स्किल आजकल के युवाओं को और आजकल के स्टूडेंट्स को अपने में डेवलप जरूर करने चाहिए।
0: तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग आपने कहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्या तात्पर्य है, उसको उदाहरण से आप कैसे समझाएंगे?
1: क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस कि आप अगर किसी एक सिचुएशन में हैं और आपको उस सिचुएशन से निकलना है, तो उसके लिए सबसे पहली एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आप उस सिचुएशन से निकले कर रहे, तो सबसे पहले उसके लिए आपको धैर्य को अपने साथ में रखना है। दूसरा, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में एकदम से एक क्विक रिस्पॉन्स के जरिए आप उस क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
0: तो क्या कोई ऐसी सफलता की कहानी है कि मान लीजिए किसी ने इस तरह से काउंसलिंग के बाद कुछ इस तरह से उसके अंदर इस तरह डेवलप हुआ हो और आपको लगा हो अपने अनुभव के दौरान कि उस बच्चे का इतना प्रोग्रेस है, उन बच्चों का हुआ है?
1: हाँ, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं जिनको हमारी काउंसलिंग के जरिए बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है और आगे जाके उन्होंने अपने एक सही करियर को चुना है। बिकॉज आजकल के छात्र क्या करते हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो ये देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तो उस पीयर प्रेशर और अपने जितने भी आप ये सोचें जो उनके अभिभावक हैं, जो हम कहते हैं पेरेंट्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि उनको क्या करियर चूज करना चाहिए। तो क्या करते हैं वो, तो ये उनको बता देते हैं कि ठीक है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपके इतने मार्क्स हैं, आप इस कॉलेज में जाइए, यहाँ पे आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी। बट कभी आपने बच्चे से समझा है या उससे पूछा कि वो क्या करना चाह रहा है? अगर उसको लग रहा है कि वो एक करियर काउंसलिंग के जरिए एक अच्छे करियर को चुनने जा रहा है और वो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए फिट नहीं है, तो हमारी काउंसलिंग के थ्रू वो अपने आप को समझ पाता है, ये जान पाता है कि मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जाना, मुझे किसी और क्षेत्र में जाना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जो हमारी काउंसलिंग के थ्रू काफी सफलता पा चुके हैं और वो अपने आप को समझ चुके हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और जब वो हमारे बारे में एक फीडबैक रखते हैं तो हमें उस बारे में बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है, खुशी मिलती है कि आज हमने किसी स्टूडेंट को अगर गाइड किया, काउंसिल किया, तो वो हमारी काउंसलिंग के थ्रू एक अपने अच्छे जो भी उनके स्किल या कौशल है उसके हिसाब से एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सका।
0: जब हम आजकल बात देखते हैं कि जो स्टेम का फील्ड जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जो है, इसका फील्ड बहुत बड़ा हो रहा है और जिस तरह से तकनीकी का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जा रहा है अकेडमिक संस्थानों के साथ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ, तो रोजगार के अवसर भी बहुत उसमें मिल रहे हैं। तो जो बच्चे

0: इन स्टेम्स के फील्ड में वो एक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट का डेटा देते हैं। तो इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे तकनीकी साधनों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको कहते हैं कि हम इंटर्नशिप्स करिए, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए, वर्कशॉप्स करिए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करिए जहां पर उन फील्ड के बारे में अपॉर्चुनिटीज मिल सके।
1: अब तो ये तो हो गया स्टेम के, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात। इसके परे जो अन्य विषय हैं, खास करके आजकल प्रबंधन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, बीबीए एमबीए की पढ़ाई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो एमबीए में भी फिर उसकी अलग अलग ब्रांच हो जाती है, कोई एचआर लेता है, कोई मार्केटिंग लेता है, कोई फाइनेंस लेता है, तो ऐसे बच्चों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह से आप दिखाते हैं कि अगर कोई साइंस के लिए फिट नहीं है, उसका रुझान नहीं है, या आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको लगता है कि इसके लिए ये फील्ड ठीक नहीं रहेगा, ये फील्ड ठीक रहेगा, तो उसमें किस किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं या एक बच्चा को जानकारी मिल सकती है कि इस में क्या अवसर है, अपार संभावनाएं हैं।
0: देखिए, अगर कोई बच्चा या कोई छात्र साइंस के फील्ड के अंदर सक्षम नहीं है तो हम उसको ये गाइड कर सकते हैं कि आप एमबीए के क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट्स के अंदर एमबीए की डिग्री बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब साइंस करने के बाद भी हमने ये देखा है कि आज बीटेक का बच्चा भी एमबीए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उस फील्ड के अंदर सफलता नहीं मिल रही, तो एमबीए के जरिए बच्चा एक अपने उस लेवल पे पहुंच सकता है जहां पे हम उसको कह सकते हैं मैनेजीरियल लेवल, जहाँ पे वो ये देख सकता है कि आप किस सीनियर लेवल पे जाके उस फील्ड को चुन सकते हैं जो उनका आगे जाके लाभकारी सिद्ध हो, ताकि वो उनको नए नए आगे प्रमोशन और अपने करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी मिल सके।
1: बहुत अच्छा। अंत में बात करेंगे कि आपके अपने अनुभव से कि इस क्षेत्र में अपने जो करियर काउंसलिंग का है, तो आप जो युवाओं के विकास के संदर्भ में किस तरह के विजन या एक क्या कहते हैं कि एक योजना को आप रिकमेंड करेंगे उनके लिए भी, खास करके नीति निर्माता के लिए भी, क्योंकि आपका एक करियर काउंसलिंग में एक लंबा अनुभव रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो बच्चे करियर काउंसलिंग में आते हैं और अपने पर्याप्त सफलता नहीं ले पाते हैं, तो क्या जो नीति बनाने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं या जो अवसर प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उसको भी किसी तरह की रूपरेखा बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, को ट्रेन करने के लिए, कोई वर्कशाला आयोजित करने के लिए?
0: बिल्कुल सही, ऐसे बहुत सारे संस्थान बनने चाहिए जहां पे जो छड़े वर्ग के लोग हैं जिनको करियर काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलता, तो ऐसे संस्थान जरूर बनने चाहिए जहां पे हर वर्ग के लोग आके काउंसलिंग ले सकें, ताकि जो करियर काउंसलिंग हम लोग दे रहे हैं वो हर प्रांत में, हर क्षेत्र में पहुंच सके और बच्चों का सही मार्गदर्शन हो सके, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि हमको सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी रुचियों और अपने स्किल्स के बेसिस पर आगे जाके भविष्य में एक सही करियर को चुनना है। तो आजकल के युवा लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि अपने आप में विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ हेल्प, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब बहुत जरूरी है आजकल के छात्रों के लिए, क्योंकि इसके बिना वो कहीं पे भी आगे बढ़ने की अगर कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे।
1: निश्चित रूप से, इसलिए आप जो है अपने पे विश्वास, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मीनाक्षी व्यास जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, आपने मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, रोजगार के अवसर, खास करके विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं और युवाओं को किस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, किस तरह से आप उनकी निपुणता की जांच करती है एक राय देने से पहले कि किस क्षेत्र में उनको अध्ययन करना चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट आदि के बारे में आपने बातें बताई, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ ही देर बाद सुबह का ही प्रोग्राम में समाप्त फरमाइएगा, हम दिया वो नातिया कलाम पेश करेंगे जनाब अबरार किरतपुरी। पौने 10 बजे प्रोग्राम होगा आज सवेरे, 9:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 10 बजे सुनिएगा अखवाले जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फरोजां। दस बजकर 5 मिनट पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे चंद्रकांत गंधर्व और चरणजीत कौर की गाई गजलें। दस बजकर 30 मिनट पर प्रोग्राम होगा चर्चा का विषय है। 11 बजे आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 11:30 पर हम पेश करेंगे जनाब अजहर अफसर का तहरीर करदा ड्रामा हादसा। 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। प्रोग्राम होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। इस दौरान 12:40 पर हम पेश करेंगे प्रोग्राम तारीख साज। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों को जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में सामने समाप्त फरमाइए जनाब अबरार किरतपुरी से हम दिया वो नातिया कलाम।

0: The Theatre Royal, now known as the Drury Lane Theatre, was opened in London and it is one of the oldest English theatre still in use.
1: 1824 में जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन की प्रसिद्ध नौवीं सिम्फनी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वियना में हुआ। ये रचना आज भी विश्व संगीत की महानतम कृतियों में गिनी जाती है।
0: In the year 1849, Bethune College was started in Kolkata for women's education. In the year 1876, Alexander Graham Bell was awarded the patent for his invention, which he named the telephone. In 1907, the first electric tramway service commenced in Mumbai.
1: वही 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ, जिसने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया। वही 1998 में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने iMac कंप्यूटर पेश किया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की दुनिया में नया बदलाव लाया।
0: And now we are going to talk about
1: अल्लूरी सीताराम राजू। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा चेहरा थे। उन्होंने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया और गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी।
0: एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ के एन शंकर, अ स्पेस साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद एंड इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोग्राम ऑफिस एंड प्रोग्राम डायरेक्टर इनसैट and was looking after overall planning and direction of communication satellite program.
1: कुछ आवाजें वक्त के साथ धीमी नहीं पड़ती, बल्कि हर दौर में और गहरी होती चली जाती है। ऐसी ही एक पहचान है प्रेम धवन, जिनके गीत आज भी दिलों में वैसे ही गूंजते हैं जैसे पहली बार सुने गए हो। प्रेम धवन हिंदी सिनेमा के उन खास गीतकारों में रहे जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें जिया भी। उनके गीतों में देशभक्ति की सच्ची भावना और इंसानी जज्बात की गहराई साफ महसूस होती है। आइए सुनते हैं प्रेम धवन का लिखा गीत।

0: Vaishnavi, these two songs have made the name Prem Dhawan great. Moving towards our next personality in this list, we are talking about Bhuvaneshwar Mishra. Today is his death anniversary. An Indian music director, a noted composer of Odissi music, primarily for Odissi dance, and a classical violin player.
1: तन्वी कभी कभी संगीत बोलता नहीं है, बस महसूस होता है, और उस एहसास को सुरों में ढालने वाले कलाकार थे वनराज भाटिया. वनराज भाटिया भारतीय सिनेमा के उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. तमस जैसे धारावाहिक में भी उनका संगीत कहानी की भावनाओं को और गहरा कर देता है. 2021 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.
0: सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्सन, एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. ओके, लेट मी जस्ट वेट हियर, एंड बिफोर आई टेक द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी, लेट्स जस्ट प्ले अ क्विज, शैल वी वैष्णवी?
1: जी बिल्कुल.
0: ओके, एंड आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. Now, who is known as Gurudev?
1: Rabindranath Tagore.
0: Right. जी. Who is the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913?
1: Rabindranath Tagore.
0: And who wrote the National Anthem of India?
1: Rabindranath Tagore.
0: Who founded Vishwa Bharati University in Shantiniketan?
1: Rabindranath Tagore.
0: Who has composed over 2,000 songs called Rabindra Sangeet?
1: Obviously, Rabindranath Tagore.
0: Absolutely, and there is the answer. Today is the birth anniversary of Rabindranath Tagore. He was born on 7th of May, and in the Indian state of West Bengal and even Bangladesh, it is celebrated in early May on the 25th day of the Bengali month of Baisakh. Since Tagore was born on this day of the year 1268 of the Bengali calendar.
1: Shruta, Rabindranath Tagore ko do deshon ke rashtragan likhne ka gaurav prapt hua tha. उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी रचा था. आज भी उनकी कविताएं और गीत दुनिया को ये सीख देती हैं कि चुनौतियों का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनका सामना करो भले ही अकेले क्यों ना हो.

0: सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, मीडियम वेव की तारीख 70 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरला में 9 मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए थिरुअनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर सुरेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शुमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बर्दार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सैयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वैश्याना दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब था। भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी पर भारत की बर्वक व मौसर जवाबी कार्रवाई को पेश किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क की पुख्ता जवाबी कार्रवाई को उजागर किया है और मुल्क के इख्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज के तई अपने अज़्म का इआदा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ला अफवाज की जुरतमंदी, हौसलामंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई ने बेमिसाल दुरुस्तगी, बाहमी हम आहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सारोगी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन और एनडीए के कई सीनियर लीडरान आज से पहर पटना में गांधी मैदान में होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वालों में एलजेपी रामविलास के संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है, जबकि हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एमएलए स्नेहा लता को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। केरल में कांग्रेस के नए मुंतखबा अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज थिरुअनंतपुरम में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस की क्यादत वाले यूडीएफ ने रियासत की 140 रुकनी असेंबली में 104 सीटें जीती हैं और ये रियासती गवर्नर के चेन्नई से थिरुअनंतपुरम पहुंचने पर उनसे मुलाकात करेगा। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ लेकर जो तमिलनाडु की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं इस वक्त चेन्नई में हैं। मगरबी बंगाल में शुमाली परगना जिले के मध्यम ग्राम में नामालूम हमला आवरों ने बीजेपी

के लीडर शुवेंदु अधिकारी के एक करीबी साथी चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मोटर बाइक पर सवार हमला आवरों ने कल रात दोहारिया में उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ को शरीर जख्मी हालत में एक मकामी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनका ड्राइवर बुद्धदेव बेहरा भी गोलियों लगने से जख्मी हो गया और उसे जख्मी हालत में कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक करने की तहकीकात शुरू कर दी है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी पहले ही बरामद कर ली है। बताया जाता है कि हमलावर चार बाइक पर सवार होकर आए थे। बीजेपी के लीडरों ने इस बहिमाना हरकत के लिए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। कांग्रेस बाएं बाजू और तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी के जाती मुआविन को हलाक किए जाने की मजम्मत की है। इसी दौरान बीजेपी के एक दूसरे कारकुन रोहित राय को शुमाली 24 परगना जिले के बशीरहाट में गोली मार दी गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगरबी बंगाल में नौ मुंतखबा बीजेपी की हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब रविन्द्रा जयंती के मौके पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के कई वज़रा आला शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर शमिक भट्टाचार्य ने जोर देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा नहीं देती हैं तो हलफबरदारी की तकरीब आईनी तकाजों के मुताबिक पूरी सख्ती से अंजाम दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मसौदे पर बातचीत सरगर्म अमल दिखाई देती है। 14 प्वाइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे एक वसी तर समझौते की जानिब मुज़ाकरात हो सकेंगे। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को कंट्रोल में बताया है, लेकिन खबरदार किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू मुज़ाकरात की पेशरफ्त के सिलसिले में अमरीकी अहलकारों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवा में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की है। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहर अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डी गोले एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसके साथ इटली और डच का जंगी जहाज भी है, जनूबी बहर अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि एक बार सूरतेहाल मुस्तहकम होने या तनाजा हल होने की सूरत में आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राहमवार की जा सकेगी। उसे ईरान के साथ भी तालमेल और ताउन की जरूरत होगी। एक दर्जन मुल्कों ने कई मीटिंगों के बाद इस मिशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। फ्रांस ने अपील की है कि वो अमरीका और ईरान की सख्त नाकाबंदी के सबब होने वाले माशी असरात के तनाजुर में अपनी अपनी तजवीज भी गौर कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में कमांडरों की दूसरी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दो रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है नए शोबे में फौजी सलाहियत ने अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर हो रही है। वजारत दिफा ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस साइबर खला और अदरा की जंग के उभरते हुए शोबों में दरपेश चैलेंजों का जायजा लेने और एक मजबूत मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग और फैसलाकुन बरतरे रखने वाली फोर्स की सलाहियतों की तरक्की के लिए लाहे अमल फराहम करेगी।
दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब

0: शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरला में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असम्बली आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए थिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शुमाली 24 परगना जिले में गोली मार कर हलाक कर दिया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अकवाले ज़री पर मबनी प्रोग्राम समाप्त फरमाइए शमे फरोजा।
2: इंसान की फितरत में जो कमजोरियां हैं उनमें से एक कमजोरी लालच भी है। हालांकि उसकी ये कमजोरी अगरचे उसे जिल्लत के बंधनों में जकड़ देती है, लेकिन इस सच्चाई के बावजूद कि लालच की चमक बारहा अकलों के शिकस्त खाने का जरिया बन जाती है, आदमी की ये कमजोरी उसके अमल व किरदार पर गालिब आ जाती है और उसकी फितरत में छिपी हुई नेकियों को दीमक की तरह चाट लेती है। यही वजह है कि दुनिया के हर अकीदे और हर मजहब के अहले दानिश ने गुरूर और घमंड की जितनी मदम्मत की है उतनी ही मदम्मत लालच, हिर्स और हवस की भी की है। पैगंबर इस्लाम ने लालच को दायमी गुलामी करार दिया, क्योंकि जब भी किसी शख्स के दिल में माल और जर या जाहो मनसब का लालच पैदा होता है तो फिर उसका सिलसिला किसी हद पर जाकर खत्म होने में नहीं आता। बाबा नानक देव जी ने अपनी एक वाणी में इशारा किया है कि दुनियादारी हिर्स और हवस और लालच का पेशखीमा है, बदी गुरूर और गुस्सा तबाही का मूजिब है। इस्लाम के मुमताज दानिश्वर हजरत अली इब्ने अबी तालिब करम अल्लाह वजहू का कौल है कि हर इक्तिफा करने वाली चीज काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत या लालच न होना चाहिए। कनात ही वो सरमाया है जो आदमी की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। इंसानी तमद्दुन की तारीख इस सच्चाई की आईनादार है कि बहुत सी खूनरेज लड़ाइयों और बहुत से वाकयात कत्ल गारत इसकी बुनियादी वजह या तो उसूल जमीन की हवस थी या हुसूल जर की लालच। आज भी नाजायज मुनफ़िद हासिल करने का लालच बहुत से मुश्किल और पेचीदा मसलों की वजह बन गया है और इन मसलों का कोई भी माकूल और काबिल कबूल हल महज इस वजह से नहीं मिल रहा है कि इनकी ग्रहें नाखून अक्ल की जगह नाखून हवस से खोली जा रही हैं। जब एक लालच दूसरे लालच से नबुर्द आजमा होता है तो इंसान की जिंदगी इंतशार और परेशानी का निशाना बन जाती है। आदमी के दिल में लालच कई वजूह से पैदा होता है, जिनमें से एक वजह खुदा की नेमतों की तरफ से मायूसी और नाउमीदी भी होती है। उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं खुदा की नेमतों का सिलसिला टूट न जाए और उसे उसकी जरूरत की कोई चीज मैसर न आने से कोई दुश्वारी ना हो। यही डर जखीरा अंदोजी का रुझान और लालच की कमजोरी पैदा करता है। खुदा के एक पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, जो मिस्र के बादशाह भी थे, जब 7 साल अकैद की मुसीबत आई तो हजरत यूसुफ ने अक्ल दानाई से काम लेकर अशिया खुर्दनी की मसावी तकसीम का तरीका जारी किया। लेकिन इस तरीके की इफादियत का दायरा जिन वजूह से घट कर रह गया उनमें से एक वजह लोगों के दिलों में पैदा होने वाली लालच और जखीरा अंदोजी का रुझान भी था, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं अच्छा खुदनी की किल्लत ना पहुंच जाए और उन्हें उनकी जरूरत का गेहूं मैसर ना आए। बाबा नानक देव जी ने अपने रफीक सफर भाई मर्दाना को राजस्थान के जंगल में सिर्फ 3 बेर खाने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी झोली में कुछ मजीद बेर तोड़कर रख लिए और जब इन बेरों को खाया तो उनके पेट में शदीद दर्द हुआ। बाबा नानक को जब पता चला तो आपने अपनी एक वाणी में

0: आप समाज पर मारे थे मिर्जा गालिब का कलम चरणजीत कौर की आवाज में। इसके साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशी खिदमत प्रोग्राम चर्चा का विषय है।
1: चर्चा का विषय है।
2: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोधगया की पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा

0: अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन्हेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: गुरजीत जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं, इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोधगया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
2: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
0: जी,
2: तो थोड़ा अचंभा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे, तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
0: जी बिल्कुल, भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है, थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए?
2: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा दिया, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध है वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडिया वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए, भारत ने INS कृपाण उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
0: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
1: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो मोर रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत जरूरत है। इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूरी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया है जो बड़े महत्वपूर्ण देश है। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है। हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज है और मिनरल जो कैपेसिटीज है उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
0: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
0: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
2: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा, हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से है जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कंबोडिया हो। तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है। और उसके देखिए क्या एफटीए

0: यूरोप के साथ और जापान के साथ, और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है। तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में, काफी मजबूत है, और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता
1: जी
0: है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ती है। पहले तो चावल अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ती है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। तो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है, और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब $16 बिलियन को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो $25 बिलियन का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
2: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान एफटीए नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफी मजबूत थे। उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अपने एक अलग आयदान पे चल रहा था। भारत आसियान एफटीए का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीका से या भारत आसियान एफटीए से बहुत फायदा उठा रहे हैं, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिला। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे, तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीका के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीका का जो री वैल्यूएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा, और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीका का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पर उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
3: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच MOU से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
2: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीजों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना यूपीआई सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहां कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम के तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफी वो कमजोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और खासतौर पर बुद्धगया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहां जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा, और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफी आसान हो गया है, और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफी सुगम होगा और काफी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना, या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक, यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा, आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी,
0: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहिए। यही अगर आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस है, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही, और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट्स भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है, और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है, वियतनाम के छोटे शहरों में, भारत के टियर 2 शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहां इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है, लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए। तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करें और बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा, और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
1: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
2: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने होचीमिन का साथ दिया, होचीमिन 1959 में भारत आए, और तब से लेकर 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम

0: नाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एटलीस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है, जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है, और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें, जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं, और अब हमने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया, जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है, और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में, चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं, उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं, वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है, और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है, बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस, कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है, इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं, वो एक दूसरे को समझें कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है, और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं, उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है 2047

0: उसमें भारत को विकसित भारत बनाने की, तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ एमओयू में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए, तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये एमओयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
2: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों हाई इलेक्ट्रॉनिक सेमी कंडक्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी रेयर अर्थ इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीएज हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूं हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोध गया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
3: सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

ब्लैक मी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनिए, फिल्म है शबनम, नगमा निगार फैज अनवर, मौसीकार अनु मलिक।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमानी गाते शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए राजा और रंग फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और समझ लीजिए मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण की आवाज में डर फिल्म का नगमा, नगमा निगारान बख्शी, मौसीकार शिवहरी।

इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशी खिदमत है जनाब अजहर अफसर के तहरीर का ड्रामा हादसा, पेशकश प्रेम वोहरा की है।

0: नहीं भैया, इसका स्विच कहाँ है? मगर अभी तो दिन है। हाँ हाँ पंखा। ये क्या हो गया? सारा सफर अच्छा कटा मगर ये वापसी पर क्या हो गया? कोई आ रहा है?
1: अरे मोहन, अरे किधर छुप रही है भाई?
0: कौन मकसूद भाई? मैं क्या छुपूंगी? कहिए वो
1: क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई हो।
0: कौन मैं? मैं तो बैठी।
1: सब खैरियत तो है ना?
0: हाँ हाँ सब खैरियत है। कहीं गए थे?
1: नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था। ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो?
0: मैं हाँ वो जरा सहेली के घर गई थी।
1: सहेली के घर?
0: हाँ मगर वो मिली नहीं, वापस लौट आई। वो क्या कर दी
1: गर्मी और इस ठंडे मौसम में ये पंखा।

0: रोजगारी तो दिला सिर्फ है, बंद कीजिए।
1: तुम तो पसीने पसीने हो रही है, क्या बात है?
0: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे।
1: जरूर कोई बात है।
0: कुछ नहीं मकसूद भाई।
1: जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही।
0: मैंने कहा ना कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और अरे कुछ उन्हें तो बताओ ना।
1: अभी अभी बाहर एक एक्सीडेंट।
0: एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट?
1: वो किसी ने एक नौजवान को टक्कर मार दी है अपनी कार से। और फरार हो गया।
0: फरार हो गया? कौन था?
1: पता नहीं कौन था या कौन थी, अभी कुछ पता नहीं चला।
0: और ये नौजवान?
1: बुरी तरह जख्मी हुआ है, फुटपाथ पर पड़ा है, शायद बेहोश है।
0: बेहोश?
1: हाँ बेहोश, माथे से धल धल खून बह रहा है। हाँ, और देखें।
0: कौन? मैं? नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं मुझसे खून नहीं देखा जाता। जाइए आप देख आइए।
1: मैं तो देख कर आ रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है।
0: जिंदा है ना?
1: वो भी तो अब तक तो जिंदा है, लेकिन
0: लेकिन
1: कुछ देर बाद मर जाएगा।
0: खुदा।
1: क्यों? तुम क्यों परेशान हो?
0: मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो वैसे ही मकसूद है वो।
1: हाँ?
0: फिर देखा ही ना वो कैसा है।
1: अरे जाने दो, हमें क्या करना है।
0: मालूम तो है वो कौन नौजवान है, कहाँ का रहने वाला है, देसी है या परदेसी है। बहुत ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ, और ये तो मर गया या जिंदा है?
1: मैं तो समझता हूँ मर गया होगा।
0: मर गया?
1: हाँ। अरे तुम उठकर क्यों खड़ी हो गई?
0: बस ऐसे बेचारा।
1: पता नहीं किसने ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट किया है। मैं तो समझता हूँ जान बूझ कर किया होगा।
0: जान बूझ कर भला कौन एक्सीडेंट करेगा? एक्सीडेंट उसी को कहते हैं ना जो अनजाने में हो जाए। भला कोई किसी को जान बूझ कर क्यों मारेगा, और वो भी कार से?
1: तुम कैसे कह सकते हो?
0: वैसे मेरा ख्याल है।
1: तुम भी तो अभी भी बाहर से आई हो, देखा नहीं उसे?
0: नहीं तो मैंने नहीं देखा, ये एक्सीडेंट शायद बाद में हुआ है।
1: हाँ शायद बाद में हुआ है।
0: मकसूद भाई।
1: हाँ?
0: जरा देखा ही ना
1: क्या
0: उसे, उसका क्या हाल है, उस नौजवान का जिसका एक्सीडेंट हुआ है।
1: रहने दो भाई, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। और फिर तुम्हें इस कदर फिक्र क्यों है?
0: नहीं नहीं कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं।
1: तुम खुद जाकर देख लो।
0: मैं?
1: हाँ क्या आ रहा है?
0: वहाँ बहुत लोग होंगे।
1: मैं जब आया हूँ तो आसपास कुछ लोग जमा होने लगे थे।
0: एक्सीडेंट के वक्त तो कोई नहीं था।
1: मालूम तो ऐसे ही होता है।
0: मकसूद भाई।
1: हाँ?
0: प्लीज जाइए ना, मालूम कीजिए क्या हुआ और ये कि अब क्या हाल है इसका। प्लीज जाइए ना
1: भाई। तुम इस कदर क्यों?
0: इंसानी हमदर्दी है और क्या, और फिर अपने घर से करीब यह हादसा हुआ है इसलिए और क्या।
1: जाता हूँ।
0: क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया, अब क्या होगा? खुदाया मेरी मदद करना। खाम खा कैसे बुरे चक्कर में फंस गई, क्योंकि मैंने सुबह सवेरे पापा की कार निकाली। सारी ट्रिप तो अच्छी रही, ये आखिर में किस बला में फंस गई मैं। कितना खून बह रहा था उसके माथे से। पापा भी घर पे नहीं है। कोई आ रहा है?
2: नूर?
0: मम्मी?
2: नूर?
0: जी मम्मी।
2: क्या बात है, कुछ परेशान हो? ये चेहरा कैसे हो रहा है तुम्हारा?
0: जी मैं नहीं तो कुछ भी नहीं।
2: वो बहाल क्यों नहीं हो, बैठो ना।
0: जी नीचे बैठ गई।
2: इस ठंडे मौसम में पंखा?
0: जी वो ऐसे ही। ना ना बंद मत कीजिए, रहने दीजिए।
2: तुम तो पसीने से शराबोर हो रही हो, तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैं तुमसे अकेले में बात करने आई थी।
0: अकेले में?
2: हाँ शादी के बारे में।
0: क्या
2: तुमने क्या सोचा है?
0: शादी? हाँ हाँ शादी। मम्मी आपको शादी की पड़ी हुई? और मैं?
2: क्या हुआ तुमको, कोई और परेशानी है?
0: नहीं नहीं परेशानी नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है।

0: ऐसा है, अभी शादी की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है?
1: क्या बात है, तुम हर बार मेरी बात टाल रही हो, इधर भी क्या देख रही हो?
0: सचमुच तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है नील, तुम बैठ जाओ आराम करो।
2: नहीं नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए।
0: अच्छा तो उस लड़के के घर वालों को जवाब भिजवा दें?
2: जवाब? हाँ हाँ भिजवा दीजिए।
0: मैं क्या जवाब भिजवाऊँ, हाँ या नहीं?
2: मम्मी अभी तो कुछ जवाब मत भिजवाइए, एक दो दिन। नहीं नहीं, दो तीन हफ्ते ठहर जाए।
0: दो तीन हफ्ते?
2: हाँ हाँ,
0: वो लोग नहीं ठहरेंगे। ऐसा अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, MBBS इसी साल किया है, प्रैक्टिस जम जाए तो खूब तरक्की करेगा।
2: मम्मी
0: एक बात बताओ मुझे।
2: क्या मम्मी?
0: क्या तू किसी और से, कोई और लड़का है उससे शादी करना चाहती है?
2: नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं।
0: क्या बिल्कुल नहीं?
2: ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
0: ऐसा है मम्मी,
2: जब मुझे शादी करनी होगी ना, मैं आपसे कह दूंगी, सब बता दूंगी।
0: हाँ हाँ, क्या
2: आप जिससे कहेंगे उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं आपसे सब कुछ कह दूंगी, आपको हर बात बता दूंगी, हर बात बता दूंगी आपको।
0: अच्छा, आप... अच्छा।
2: मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है मम्मी।
0: नहीं दबा दो।
2: नहीं नहीं, वो
0: मैं सीवन को भेज दूँ?
2: जी नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, मैं जरा कमरा बंद करके सोऊंगी।
0: कोई टेबलेट ले लो।
2: हाँ मैं सर दर्द की कोई गोली ले लूंगी या बाम लगा लूंगी।
0: ये लो।
2: थैंक यू मम्मी, अब आप जाइए।
3: नूर, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही थी? इतनी सी बात के लिए जहर खा रही थी?
2: ओहो मकसूद भाई, मैं जहर नहीं खा रही थी, सर दर्द की गोली खा रही थी।
3: ओहो, तो मैंने अच्छे खासे गिलास का खून कर दिया।
2: मकसूद भाई, आपने क्या कहा खून?
3: नूर,
2: आप उस नौजवान की खबर लेने गए थे ना, क्या खबर है, कैसा है वो?
3: कौन?
2: वही जिसके बारे में आप बता रहे थे कि कोई नौजवान किसी कार से टकरा कर गिर पड़ा है, बेहोश है।
3: वो
2: कैसा है वो?
3: अब भी बेहोश है।
2: अब तक बेहोश है, किसी ने उठाया नहीं?
3: मेरे जाने तक 8-10 आदमी जमा हो चुके थे, उसे सामने वाले घर में ले गए हैं। नूर, कहीं एक्सीडेंट तुमने, मेरा मतलब है तुमसे तो नहीं हुआ?
2: मकसूद भाई, मुझसे हुआ ही एक्सीडेंट।
3: अरे बैठो बैठो, अपनी यहां से बैठो, अरे बैठ जाओ ना। अच्छा बताओ ये हुआ कैसे, तफसील से?
2: तफसील से?
3: हाँ सब सच सच।
2: क्या तफसील बताओ, सुबह से मेरे गैरेज में से कार निकाली।
3: पापा ने तुम्हें कार चलाने से मना किया है और सख्ती से मना किया है, तुमने अब तक अपना लाइसेंस भी नहीं बनवाया है। खैर फिर?
2: फिर क्या, मैं सुबह सवेरे कार लेकर घर से निकली और इधर उधर सुनसान सड़कों पर घूमती रही।
3: उधर तो कोई हादसा नहीं हुआ?
2: नहीं नहीं।
3: कोई पूछगछ?
2: कुछ नहीं, बस जब मैं वापस हो रही थी तो अपने गेट के पास अचानक कोई मेरी कार के सामने आ गया।
3: कोई सड़क पार करता होगा
2: शायद। जैसे ही जब मैं आकर गिरा, मैंने गाड़ी अपने गेट में मोड़ी और
3: इस कमरे में आकर बैठ गई।
2: बैठ कहाँ गई, आप नहीं जानते भाईजान, उस वक्त से मैं किस कदर परेशान हूँ।
3: वाह वाह वाह, एक नौजवान को कार से टक्कर मार दी और पलट कर भी ना देखा।
2: वो गिरा तो उसके माथे से खून बह रहा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देख सकी।
3: अब क्या होगा?
2: आप बताइए ना मकसूद भाई, अब क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ, खुदा के लिए बताइए ना क्या होगा, उसका क्या हाल है?
3: ये बताया ना, बेहोश है, सोचता हूँ उसे यहाँ उठाकर ले आऊँ।
2: यहाँ? नहीं नहीं।
3: बड़ी सफाक हो, एक तो खून किया, दूसरे
2: खून? मैंने किसी का खून नहीं किया।
3: अगर वो मर जाए तो?
2: मैंने जानबूझ कर तो किसी को टक्कर नहीं मारी।
3: किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं?
2: मैं समझती नहीं।
3: लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, ये कौन है, इस बुरी तरह किसकी कार से जख्मी हुआ है, कौन चला रहा था, कहाँ चला गया, किसी ने रोका नहीं।
2: आपने क्या कहा?
3: मैं क्या कहता, औरों की तरह मैं भी चुप था, कुछ कहता तो सब मुझ पर ही पलट पड़ते। पुलिस का एक जवान भी आ गया था।
2: पुलिस का जवान?
3: मैंने उससे कहा कोई नहीं जानता भाई ये कौन है और किसकी कार से जख्मी हुआ है, कोई कार का नंबर भी नहीं देख सका, कौन डर है मैं जो इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट करके फरार हो गया। लोग उसी कांस्टेबल की मदद से उस नौजवान को सामने वाले घर में ले गए।
2: कोई डॉक्टर नहीं आया?
3: एक दो आदमी डॉक्टर को लेने गए तो हैं, मगर मेरा ख्याल है डॉक्टर के आने तक वो बचेगा नहीं।
2: मकसूद भाई
3: बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है।
2: पुलिस आ गई है तो उस आदमी की तलाश करेगी।
3: किसकी?
2: उसकी, जिसने एक्सीडेंट किया है। और ये भी पता चलाएगी कि वो बदमाश नौजवान कौन है, कहाँ का रहने वाला है।
3: मगर सब कुछ होश में आने के बाद होगा ना?
2: उसे होश आ जाएगा
3: तो क्या होश में नहीं आना चाहिए?
2: नहीं मकसूद भाई, ऐसा मत कहिए। खुदा के लिए उसे दवाखाने ले जाने का बंदोबस्त कीजिए ना।
3: एम्बुलेंस के लिए मैंने फोन तो किया है।
2: दवाखाने में वो ठीक हो जाएगा, उसे होश भी आ जाएगा।
3: लेकिन होश आ जाने पर वो अपने बारे में भी बता देगा, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और ये भी बताएगा कि कार कौन चला रहा था, कार का रंग कैसा था। शायद उसे कार का नंबर भी याद हो।
2: तो आफत है।
3: दफा 302।
2: कत्ले अहमद? कत्ले अहमद कैसा? ये तो इत्तेफाकी हादसा है।
3: वो इत्तेफाकी हादसा क्यों बताएगा? वो तो संगीन से संगीन जुर्म बनाने की कोशिश करेगा।
2: फिर तो उसे होश नहीं आना चाहिए।
3: क्या कह रही हो, कब तक होश नहीं आना चाहिए?
2: कब तक? कुछ दिनों तक।
3: फिर तो केस और खराब हो जाएगा। ज्यादा बेहोशी अच्छी नहीं। कहीं बेहोशी बेहोशी में वो इस जहां से गुजर गया तो पुलिस बख्शेगी नहीं।
2: पुलिस? पुलिस भाई जान,
3: तुमने तो बहुत बुरा किया नूर। ठहरो, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ
2: क्या होगा, क्या करूँ। मुफक्किरों ने कहा है जब आदमी परेशान हो तो उसे कोई किताब पढ़नी चाहिए। किताब? किताब? हाँ, ये किताब। जब पानी खल खल बोलने लगे तो बड़े चमचे में टुकड़ा लेकर पानी का छींटा देकर दबा कर देखिए कि घुल गया है या नहीं, वरना दाल नहीं गलेगी। ओ तबा तबा, ये तो कौन की किताब है? हाँ देखो, इस किताब में क्या है। मौजूदा दौर में तहकीक की बदबख्ती ये है कि इसे शुदा गैर इल्मी और गैर अदबी मुफादात के हुसूल का तारकीद बना लिया गया है। इसकी तौजीह एक तो अदबी सियासत और शोभा जाती मसाइल का दबाव है, दूसरे गैर जिम्मेदार सहल निगारी और नाकर्दाकारी। ओए पता नहीं क्या है, हाँ समझ में नहीं आता।
4: हेलो नूर।
2: शीला? हेलो शीला, आओ आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आए, बहुत दिनों बाद। अरे भाई कल ही तो मिली थी। हाँ कल शाम ना? हाँ कल शाम ही तो तुमसे मिलना हुआ था। ये मकसूद भाई कहाँ गए? हाँ बड़े चलते में थे। पता नहीं, वो मकसूद भाई ना? हाँ वो जरा उधर का ख्याल रखने गए हैं।
4: उधर का ख्याल?
2: हाँ किधर का? वो उधर का, बाहर का? नहीं वो शायद अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। तुम बैठो ना, अपनी नाम से बैठो।
4: मैं ठीक हूँ,
2: तुम क्यों डर रही हो?
4: वो बैठो ना।
2: कोई खास बात है?
4: नहीं तो कोई खास बात नहीं है।
2: बोलो क्या पियोगी? बोलो शरबत पिलाओ, खून की तरह से।
4: खून? खून की तरह से?
2: हाँ भाई वो लाल शरबत जो तुमने पिछले हफ्ते ही तो पिलवाया था।
4: ओ बहुत मजेदार था। मगर नूर,
2: हाँ तुम बहुत परेशान लग रही हो,
4: क्या बात है?
2: कुछ नहीं,
4: जरूर कोई बात है।
2: बैठे था, अब बता क्या बात है?
4: मेरी इतनी अजीज सहेली और मुझसे ही छुपा रही हो?
2: नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात हो तो बताओ।
4: देखो तुम कैसी ही मुश्किल में हो, मुझसे मत छुपाओ। मेरा भाई वकील है, मालूम है बड़ी से बड़ी मुसीबत चुटकी बजाते दूर कर देगा।
2: हाँ तुम्हारे भाई वकील है ना? वो क्या नाम है?
4: जरा उनसे मशवरा करना था।
2: मैं ही तो पूछ रही हूँ इतनी देर से।
4: बताओ क्या बात है?
2: वो मैंने,
4: हाँ
2: तुमने,
4: तुम किसी से कहोगे तो नहीं?
2: कैसी बातें कर रही हो?
5: वो शीला मुझसे
2: मुझसे क्या
5: शीला मुझसे

0: मुझे खून हो गया है।
1: खून? शीला शीला चुप रहो, कुछ सुन लेगा। खून खून खून क्या कर रही हो? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, मैं जा रही हूँ। सुनो शीला, शीला सुनो, कहाँ जा रही हो?
0: मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे जाने दो,
1: मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। खून शीला,
0: ये तो चीखती चली जा रही है, पता नहीं क्या करे। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ।

0: बंद हो गई। अच्छा हुआ मैंने रिसीवर नहीं उठाया, पता नहीं कौन था। कौन?
1: जी मैं।
0: आप?
1: जी
0: आप यहाँ कैसे आ गए?
1: जी इस तरफ से, सीढ़ियों से।
0: लेकिन आप हैं कौन?
1: आपने मुझे नहीं पहचाना?
0: जी नहीं।
1: मैं
0: ओफो जल्दी से फरमाइए ना, आप कौन हैं?
1: मैं आपकी सहेली।
0: सहेली?
1: आपकी सहेली शीला का भाई हूँ।
0: शीला के भाई हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: जी बैठ पाओ।
0: अजीब आदमी है आप।
1: मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ।
0: मदद? कैसे मदद?
1: आपको मेरी मदद नहीं चाहिए?
0: जी नहीं, मुझे इस वक्त और ज्यादा परेशान मत कीजिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, जाइए।
1: बहुत खूब, मैं जा रहा हूँ। देखिए मैं एक एडवोकेट हूँ, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया था।
0: क्या आप एडवोकेट हैं?
1: जी
0: ठहरिए ठहरिए ना, जरा ठहरिए।
1: जी
0: पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? मैं आगे मंगवाती हूँ।
1: जी जी वो ऐसा है कि पहले ये बताइए कि हुआ क्या है।
0: आप शीला के भाई हैं?
1: जी हाँ।
0: देखिए अभी भी मैंने उसे अपनी अजीज सहेली जानकर सरा सी बात बताई और वो चीखते चिल्लाते बाहर भागे।
1: देखिए देखिए आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, शीला नादान है, बहुत भोली है, उसके चीखने चिल्लाने से भी होने वाला कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ, किसी किस्म की कोई फिक्र मत कीजिए और खुलकर हर बात बयान कर दी।
0: जी
1: देखिए ये तो आप जानते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए।
0: जी हाँ जानती हूँ।
1: तो फिर फरमाइए।
0: जी ऐसा हुआ, पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा
1: स्पेशल मजिस्ट्रेट है, मैं जानता हूँ।
0: वो चार रोज के लिए बाहर गए हैं।
1: जी वो कहाँ गए हुए हैं ये बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। जी
0: जी आज सुबह मैंने उनकी गाड़ी
1: अच्छा यानी कार
0: जी हाँ बाहर निकाली। मुझे कार चलाने का बेहद शौक है।
1: मगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है?
0: जी बिल्कुल नहीं, मगर मुझे कार चलाने का बहुत शौक है।
1: यानी इंसानी जिंदगियों से खेलने का बहुत शौक है।
0: पापा मुझे हमेशा मना करते हैं। मैंने सुबह कोई 7:15 बजे कार निकाली।
1: घर के किसी फर्द को बताए बगैर?
0: जी हाँ।
1: कहाँ कहाँ घूमी फिरी आप?
0: सबसे पहले तो मैं उस तरफ गई थी, यानी पुरानी शहर की तरफ।
1: जी।
0: फिर जू से होती हुई वापस हो गई।
1: जी खूब?
0: जी खूब नहीं, जब मैं घर वापस हो रही थी घर के फाटक के पास।
1: फाटक के पास?
0: मैं कार मोड़ने वाली थी कि अचानक एक नौजवान कार के सामने आ गया।
1: कार के सामने आ गया?
0: हाँ।
1: या आपने उसे कार के सामने ले लिया?
0: ओहो मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है न जाने कहाँ से एक नौजवान अचानक मेरी कार के सामने आ गया और लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
1: लड़खड़ा कर गिर पड़ा, यानी आपने बड़े जोर से डैश किया?
0: मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना देखा मैंने कि वो लड़खड़ा कर गिरा, उसकी पेशानी से खून बह रहा था।
1: खून?
0: जी हाँ। फौरन मैंने कार अपने गेट के अंदर ली, गैरेज में बंद की और यहाँ भाग गई इस कमरे में।
1: आपने जब इस नौजवान को मारने की कोशिश की?
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने उसे मारने की कोशिश की?
1: लेकिन मैं मरा नहीं।
0: आप मेरे एडवोकेट हैं?
1: बिल्कुल। खैर जो कुछ भी हुआ हो, आपके इस एक्सीडेंट के वक्त सड़क पर कौन कौन था?
0: मेरा ख्याल है कोई नहीं था।
1: कोई राजी?
0: मैंने कहा ना कोई नहीं था।
1: नौजवान होश में आया या मर गया?
0: पता नहीं, होता करे वो बच्चा है।
1: ताकि आप पर कत्ल-ए-अमद का केस कर सके। क्यों?
0: मैं तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते उसके जीने की दुआ कर रही हूँ। आप हंस रहे हैं? ये हंसने की बात नहीं है।

0: और आप है क्या कहकहे लगा रहे हैं। सोचिए कितना संगीन मसला है, किसी की जान पर बनी हुई है और आप हंस रहे हैं।
1: देखिए एक अच्छा वकील हर संगीन मसले पर कहकहे लगाता है और एक अच्छा डॉक्टर खतरनाक से खतरनाक मर्ज पर मुस्कुराता है या मुस्कुराता हुआ इलाज करता है।
0: मेरी जान निकली जा रही है और आप कहकहे लगा रहे हैं।
1: कुछ नहीं होगा।
0: कुछ नहीं होगा
1: जी, कुछ नहीं, सिर्फ बगैर लाइसेंस कार चलाने के जुर्म में हो सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका चालान हो जाए
0: जी।
1: और फास्ट ड्राइविंग के तहत भी चालान किया जा सकता है, हो सकता है,
0: और भी हो सकता है,
1: हो सकता है पुलिस केस बन जाए
0: और
1: भी बहुत कुछ हो सकता है। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए मैं आपका कानूनी मुफ्ती हूँ, अब आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। मैं आपका केस लूंगा, ये केस और हर केस। लीजिए इस फॉर्म पर दस्तखत कीजिए, यहाँ ये लीजिए कलम।
0: कहाँ?
1: यहाँ दस्तखत फरमाइए
0: जी।
1: नहायत खुशखत
0: जी।
1: आप कुछ मत सोचिए और न किसी किस्म की कोई फिक्र कीजिए।
0: मगर वो एक्सीडेंट, वो नौजवान।
1: अरे किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, बेफिक्र होकर सो जाइए। जी हाँ सो जाइए।
0: इस वक्त तो नींद नहीं आ रही है।
1: अभी ना आए तो भी सो जाइए। जब कोई शख्स मेरा क्लाइंट बन जाता है,
2: समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं।
1: ओहो अच्छा मसूद साहब आओ।
3: जी मैं
1: देखिए ये मेरी क्लाइंट बन चुकी है,
3: मुबारक।
1: चलिए आज एक केस तो मिला, मैं चलता हूँ।
0: गिरधर साहब वो कुछ रुपए।
1: देखिए सारा बिल केस जीतने के बाद, मैं पेशगी रकम किसी से नहीं रहता।
0: मकसूद भाई उस नौजवान का क्या हुआ, होश आया?
3: नहीं अभी नहीं।
1: उसका होश में ना आना ही बेहतर है। होश में आते ही वो आपकी कार का नंबर और सारी तफसील बता देगा।
3: टक्कर के बाद वो गिरते ही बेहोश हो गया है, उसने कार का नंबर कब देखा होगा?
0: खुदा तुम्हें खुश रखे मकसूद भाई।
3: नहीं हो सकता है वो होश में आने के बाद कार का नंबर बता दे। ओखा खार, ये सारी बातें तो नौजवान के होश में आ जाने के बाद की हैं।
1: अब फिर भी आप किसी किस्म की कोई फिक्र मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ।
0: आप जा रहे हैं?
1: देखिए ये रहा मेरा कार्ड, गिरधर गिरधारी गोपालाचारी निर्दोष एडवोकेट। इस पर मेरे चार टेलीफोन नंबर हैं, मैं इन चारों टेलीफोन नंबर्स पर अवेलेबल हूँ
0: जी।
1: अच्छा थैंक यू।
0: थैंक यू
3: एडवोकेट साहब तो गए।
0: अब क्या होगा भाईजान, पता नहीं अब क्या हो, होश नहीं आएगा
3: ना आए, ये भी तो हो सकता है।
0: खुदा के लिए ऐसा मत कहिए।
3: हाँ चलिए आपकी खातिर में होश में आ गया, फिर
0: होश में आ जाए ना तो उसे आप यहाँ ले आइए, किसी भी तरह। मैं उस नेक दिन नौजवान से माफी मांग लूंगी और उसके सामने अहद करूंगी कि अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाना क्या कार की तरफ देखूंगी भी नहीं।
3: मगर पता नहीं वो नौजवान किस तबीयत का आदमी है।
0: क्या मतलब?
3: यही कि वो यहाँ आने को तैयार होता है या नहीं। यहाँ आता है तो तुम्हें देखकर, यानी उसे देखकर जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की हो, उसका क्या रवैया रहता है।
0: क्या करूँ क्या करूँ मकसूद भाई, मैं क्या करूँ?
3: टहलो मत, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई सुकून की चीज लाता हूँ। पहले तुम कोई शरबत पियो, फिर हालात पर ठंडे दिल से गौर करो।
0: पापा के पास चले जाओ सिर पर।
3: बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह का गलत मशवरा तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अरे भाई फरार का केस बन जाएगा, दो तीन केस पहले ही है, ये एक नया इजाफा।
0: पापा से मशवरा करूंगी ना।
3: पापा? अरे वो तो पूरी बात सुने बगैर ही आग बबूला हो जाएंगे और बंदूक संभाल लेंगे।
0: क्या करूं भाईजान?
3: तुम उस नौजवान से शादी क्यों नहीं कर लेती?
0: शादी किस नौजवान से?
3: उससे जिसको मम्मी ने पसंद किया है। आखिर उसमें बुराई क्या है?
0: ओ ये शादी की बात इस वक्त कहाँ से आ गई?
3: नहीं ऐसे ही,
0: आप देख रहे हैं ना मैं इस वक्त किस कदर परेशान हूँ, किन खतरनाक हालात से गुजर रही हूँ और आपको आपको शादी की जरूरत रही है।
3: नहीं ऐसे ही कह रहा हूँ।
0: मकसूद भाई बाज वक्त आप भी ऐसी बातें करते हैं, मैंने जिस आदमी को देखा नहीं, जिससे मिली नहीं, उससे
3: मम्मी और पापा ने सब कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, इसमें तुम्हें एतराज क्या है?

0: को बिल्कुल बायकॉट कर रही हूँ। आखिर क्यों?
1: ओ, मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती।
0: बुरा मत मानना, बकौल डैडी तुम 24 बरस की हो चुकी
1: हो। जाने दो। अच्छा, अब मैं समझी मेरी शादी की फिक्र आपको क्यों है, ताकि आपका नंबर जल्द से जल्द आ जाए। हाँ
0: जी नहीं, पापा और मम्मी ने जिस नौजवान को तुम्हारे लिए चुना है बहुत सोच समझ कर चुना है, मैं उसे जानता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, बरसरे रोजगार है, अच्छे घराने का है, और फिर तुम्हें बेहद चाहता है।
1: ये जाने की खूब रही, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं जिसे जानती नहीं पहचानती नहीं कभी मिली तक भी नहीं।
0: उसने तुम्हें देखा है कई बार।
1: मुझे?
0: हाँ सच नूर, वो तुम्हें बेहद चाहता है।
1: हा?
0: मेरा मशवरा मानो तो इस शादी से इनकार न करो। कोई कार है?
2: नहीं, ये तो हमारे घर के अंदर आ रही है।
1: के अंदर?
0: इंस्पेक्टर है।
1: इंस्पेक्टर?
0: नूर, अरे तुम कहाँ जा रही हो?
1: कहीं नहीं।
2: सर्वर, तुम यहाँ क्या बात है?
0: भाई मकसूद, सुबह सवेरे एक नौजवान को अपनी कार से बुरी तरह जख्मी करके कोई तुम्हारे घर में घुस गया है। हमारे घर में? हाँ, अब मैंने देखा है कि गैराज में खड़ी कार का नंबर भी वही है जो लोगों ने बताया है। नूर, नूर, अरे ये तो बेहोश हो गई।
1: क्या बात है
0: शीला? अच्छा वो तुम भी आ गई, जरा पानी लाना।
1: पानी?
0: नूर,
1: ये लीजिए।
0: नूर,
1: मकसूद भाई, सरवर भाई, अब बहुत हो चुका, अब इस खेल को खत्म कीजिए, बेचारी की जान पर बन गई है। नूर, नूर, नूर, शीला, नहीं नूर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब लोग मिलकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सब मिलकर? और क्या, तुम अपनी शादी को टालती जा रही थी ना, और ये सर्वर तुमसे शादी करना चाहते हैं। सर्वर? हाँ, ये इंस्पेक्टर नहीं, सर्वर भाई हैं। सुबह यही तुम्हारी कार से टकराए थे। चोट वोट तो लगी नहीं, दिलने की एक्टिंग खूब की, पेशानी पर लाल रंग जो पहले से ये लिए हुए थे फौरन लगा लिया।
0: यस नूर,
1: यही है सरवर भाई जो सुबह तुम्हारी कार से टकराए थे। सब कुछ सोचा समझा मनसूबा था। शीला, तुम्हारे भाई ये सरवर, मेरा भाई गिरधर, एडवोकेट, सब इस प्लान में मिले हुए थे।
0: अपने को क्यों बचाती हो? तुम्हारी मदद के बगैर ये सब कुछ हो सकता था?
1: चलो भाई, अब बहुत हो चुका।
0: मगर मैं तो इन्हें गिरफ्तार करूंगा।
1: हथकड़ी लाए हो शीला?
0: हाँ, ये फूलों की हथकड़ी लाया हो।
1: मेरी तो जान जा रही है, अच्छा प्लान बनाया आप लोगों ने, मैं भी नहीं जानती थी कि ये बात इस हद तक पहुंच जाएगी। चल उठ, हथकड़ी पहन ले, मंजूर है? आप सब यही चाहते हैं तो मंजूर है।

एक समझौते के करीब पहुंच रही हैं। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिना मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तका टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वैश्याना दहशतगर्दाना हमले का मुंहतोड़ जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम मुजाहरा था, जिसे फौजी और गैर फौजी जराये के इश्तराक से अंजाम दिया गया। इस कसीर जहती ऑपरेशन ने दहशतगर्दाना खतरात को असरदार तरीके से नाकारा बना दिया। पाकिस्तानी जारियत को रोका और दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया। इस ऑपरेशन के दौरान बैन अल-अक़वामी हिमायत हासिल करते हुए स्ट्रेटेजिक तहमुल को बरकरार रखा गया। यह ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और इसका मंसूबा बनाने वालों को सजा देने के लिए चलाया गया था, ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ह फौज ने दहशतगर्दी के मंजरनामे का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुतादिद दहशतगर्द कैंपों और तरबियती मकामात की निशानदेही की। यह ऑपरेशन अपनी कामयाबी की खुदगवाही देता है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के 9 बड़े कैंपों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के 11 फजाई अड्डों पर हमला किया गया और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। ये हमले बहुत शदीद थे और भारत ने उन्हें पेशावराना अकदार और तहमुल से अंजाम दिया, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना अहदाफ को भी निशाना बनाया गया और आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया गया। इस भारी नुकसान के बायस पाकिस्तान जंगबंदी पर मजबूर हो गया। नई दिल्ली ने यह ऑपरेशन न सिर्फ ये के कामयाबी के साथ अंजाम दिया, बल्कि इससे भारत की फौजी ताकत और उसकी तीनों शाखों भारतीय फजाई फौज, भारतीय बड़ी फौज और भारतीय बहरिया की मरबूत कार्रवाई का भी मुजाहरा हुआ। इस ऑपरेशन ने जदीद दिफाई निजाम की बरामद में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों को भी उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौकिफ और उसकी तबाहकुन फौजी ताकत का इजहार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी का खात्मा करने और उससे मुतालिक इको निजाम को तहस नहस करने के तहीं अपने अज़्म पर पूरी तरह कारबंद है। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ह फौज ने बेमिसाल हौसले, कामिल दुरुस्तगी के साथ कार्रवाई अंजाम देने के अलावा पूरी तरह अजम का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मुसल्ह फौज ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की जुर्रत की थी। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम भारतीय फोर्सेज की शुजात के लिए उन्हें सलाम पेश करती है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की सलामती के तहफ्फुज के लिए ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई और उसके गैर मुतजलजल अजम की अक्कासी भी होती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने मुसल्ह फौज की पेशावराना सलाहियतों, तैयारियों और मरबूत कुव्वत को भी उजागर किया। जनाब मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने फोर्सेज में बढ़ती हुई हम आहंगी को जाहिर किया और उस ताकत को उजागर किया जिससे दिफाई शोबे में खुद कफील बनने की भारत की जद्दोजहद की वजह से कौमी सलामती को तकवियत मिली है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सुदूर में भारत की तरफ से हासिल की गई जबरदस्त कामयाबी मुल्क के बहादुर फौजियों की गैर मामूली शुजात और हुब्बुल वतनी की एक तहरीक देने वाली मिसाल है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ह फौज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ह फौज की जुरतमंदी, हौसलामंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई बेमिसाल दुरुस्तगी, बाहमी हम आहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए एक नई मिसाल कायम की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वियतनाम के सदर तो लाम अपने 3 रोजा भारत दौरे के दौरान आज मुंबई पहुंच रहे हैं।

0: नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 13 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। आज मुंबई में सदर तोलाम कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वियतनाम के सदर तोलाम अपने एक रोजा मुंबई दौरे के आगाज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, जहां वो बावकार रिंग द बेल तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में सदर तोलाम वजीर आला के हमरा भारत वियतनाम कारोबारी फोरम में शिरकत करेंगे, जहां वो कलीदी खिताब करेंगे। इस फोरम का एहतमाम वियतनाम के कॉमर्स और इंडस्ट्री के चैम्बर की शराकत से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की तरफ से किया गया है। अपने दौरे के आखिर में सदर तोलाम लोक भवन में महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करेंगे, जहां सदर के एजाज में ईशाइये का एहतमाम किया जाएगा। भारत और वियतनाम के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी साझेदारी के तनाजुर में भारत की मालियाती राजधानी मुंबई का सदर तोलाम का दौरा अहमियत का हामिल है। अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं, ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मसौदे पर बातचीत सरगम अमल दिखाई देती है। 14 प्वाइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे के एक वसीतर समझौते की जानिब मुजाकरात हो सकेंगे। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को कंट्रोल में बताया है, लेकिन इसके साथ ही खबरदार भी किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली जराये के मुताबिक वजीर अजम बिनयामिन नेतन्याहू मुजाकरात की पेशरफ के सिलसिले में अमरीकी एहलकारों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवाह में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की। जंगबंदी के बाद से लबनान की राजधानी में इस तरह की यह पहली फौजी कार्रवाई है। इससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। लड़ाई वाले खित्तों और अहम समुद्री इलाके में काफी कशीदगी है, हालांकि सफारती कोशिशें भी आगे बढ़ी हैं। इसमें पेशरफ भी हुई है। ईरान के पाजदारान इनकलाब की बहरिया ने कहा है कि नए तरीकाकार व जाब्तों के तहत ही अब नए हुरमुज के जरिए जहाजों के लिए एक महफूज रास्ता मुमकिन है। इस दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने खलीज उमान में ईरानी परचम बरदार एक तेल टैंकर को रोक दिया है, क्योंकि उसने जारी अमरीकी नाकाबंदी की मुजाहमत करते हुए ईरानी बंदरगाह के जानिब बढ़ने की कोशिश की थी। इधर इसराइली फोर्स ने बैरूत में हिजबुल्ला से मुंसलिक रादवान फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की है। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहरे अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा कि उसका तैयारा बरदार जहाज, जिसके साथ इटली और हॉलैंड का जंगी जहाज भी शामिल है, जुनूबी बहरे अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज पर काम कर रही हैं, जिसका मकसद यह है कि एक बार सूरत हाल मुस्तकम होने या तनाजा हल होने की सूरत में आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राह हमवार की जा सकेगी। उसे ईरान के साथ भी तालमेल और ताउन की जरूरत होगी। एक दर्जन मुल्कों ने कई मीटिंगों के बाद इस मिशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इंदिया दिया है। फ्रांस ने अपील की है कि वह अमरीका और ईरान की सख्त नाकाबंदी के सबब होने वाले माशी असाद के तनाजुर में अपनी अपनी तजवीज पर गौर करें। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगी, जिसमें 35 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का इम्कान है। इस चैंपियनशिप का एहतमाम दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया है। चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनाकिद होगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, और फ्रांस ने अपनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में वेग 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। پیش خدمت ہے فلمی دیوانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार आर डी बर्मन। और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, मिले सुर मिला तुम्हारा प्रोग्राम में, किनारा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया आर डी बर्मन ने।

और समाजी तौर पर यह जमाना बहुत अहम था। एक तरफ अंग्रेज हुकूमत का हल्का इख्तियार बढ़ता जा रहा था और दूसरी जानिब इस बढ़ते हुए तूफान के तई हिंदुस्तानी अवाम का सियासी शोर बेदार हो रहा था। कंपनी सरकार ने बदलते हुए हालात और तकाजों के तहत अपनी कार्रवाईयों का मरकज अब दिल्ली को बना लिया तो वतन परस्त कुवतों का मरकज और मुंबा भी दिल्ली बन गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वतन परस्ती की अलामत बन गए। उर्दू सहाफत ने एक तवील खामोशी के बाद सन 1836 में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार अखबार दिल्ली के नाम से निकलना शुरू हुआ, जिसके मुदीर मौलवी मोहम्मद बाकर थे। यही अखबार दिल्ली बाद को दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आब हयात में इस अमर की तस्दीक की है कि दिल्ली उर्दू अखबार सन 1836 में निकलना शुरू हुआ। मौलवी मोहम्मद बाकर जैसे आलिम और दानिश्वर की इदारत में निकलने वाला यह अखबार बहुत जल्द खासो आम में मकबूल हो गया और मुल्क के दूर दराज इलाकों तक इसकी रसाई हो गई। इस अखबार में दो कॉलम होते थे, एक कॉलम हुजूर वाला के उनवान से और दूसरा साहिब कला के उनवान से। हुजूर वाला बादशाह दरबार और कलाए मौल्ला की खबरों के लिए मखसूस था, जबकि दूसरे कॉलम साहिब कला में दूसरी तमाम खबरें दर्ज की जाती। इसमें कंपनी के अफसरान के हुक्मनामे, मुल्क के दूसरे सूबों की खबरें और गैर ममालिक की खबरें शामिल होती थी। यह अखबार एक इदारे की हैसियत रखता था क्योंकि इसमें दिल्ली के सियासी मजलिसी और तमद्दनी जिंदगी के अक्स के साथ साथ माशरे के नए मसाइल का जायजा भी लिया जाता और नए तकाजों के तई एक मुनासिब राह अमल की निशानदेही भी की जाती ताकि एक सेहतमंद समाजी शऊर पैदा किया जा सके।

प्रेरणा फिल्म के दौरान आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और प्रीति सागर की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में समाप्त होने वाली केसरी फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है तांशिक बागची ने।

ममता फिल्म का ये दो गाना सुनिए, लता मंगेशकर सुन रहे थे आप, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में नगमा निगार थे मजरू मौसीकार रोशन। आज के मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और उषा टिमोदी की आवाजों में सुनी कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म है परिवार।

0: बुनियादी साझेदारी के तनाजुर में भारत की मालियाती राजधानी मुंबई का सदर तोलाम का मजकूरा दौरा अहमियत का हामिल है। अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मुसविदे पर बातचीत सरगर्म अमल दिखाई देती है। 14 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा जिससे कि एक वसीतर समझौते की जानिब मुजाकरात हो सकेंगे। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को कंट्रोल में बताया है लेकिन खबरदार किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली जराये के मुताबिक वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू मुजाकरात की पेशरफ्त के सिलसिले में अमरीकी अहलकारों के साथ सलाह मशविरा कर रही हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवा में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की है। जंगबंदी के बाद से लिबनान की राजधानी में इस तरह की यह पहली फौजी कार्रवाई है, इससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। लड़ाई वाले खितों और अहम समंदरी इलाके में काफी कशीदगी है, हालांकि सिफारती कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और इनमें पेशरफ्त भी हुई है। ईरान के पासदारान इंकलाब की बहरिया ने कहा है कि नई तरीकाकार और जाब्तों के तहत ही आब नए हुर्मुस के जरिए जहाजों के लिए एक महफूज रास्ता मुमकिन है। इसी दौरान अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उसने खलीज ओमान में ईरानी परचमबरदार तेल टैंकर को रोक दिया है क्योंकि उसने जारी अमरीकी नाकाबंदी की मुजाहिमत करते हुए ईरानी बंदरगाह की जानिब बढ़ने की कोशिश की थी। फ्रांस ने अब नए हुर्मुस को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहरे अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स टू गोल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसके साथ इटली और डच का जंगी जहाज भी है, जनूबी बहरे अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज पर काम कर रही है जिसका मकसद ये है कि एक बार सूरत हाल मुस्तहकम होने या तनाजा हल होने की सूरत में अब नए हुर्मुज के रास्ते जहाजों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राह हमवार की जा सके। उसे ईरान के साथ भी तालमेल और तआवुन की जरूरत होगी। एक दर्जन मुल्कों ने कई मीटिंगों के बाद इस मिशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इंदिया दिया है। फ्रांस ने अपील की है कि वो अमरीका और ईरान की सख्त नाकाबंदी के सबब होने वाले मुआशी असरात के तनाजुर में अपनी अपनी तजवीज पर गौर करें। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा जिसमें 35 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का इम्कान है। इस चैंपियनशिप का एहतमाम दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुश्तरक तौर पर किया गया है। चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनक्किद होगी। दिल्ली की वजीर आरा ने ऐलान किया कि दिल्ली की खेलों की बैन अवी तकरीबा की मेजबानी करने की एक तवील तारीख रही है और आइंदा होने वाली चैंपियनशिप दुनिया के खेल के नक्शे में दिल्ली शहर की हैसियत और वकार को मजीद मुस्तहकम करेगी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज पहला साल पूरा हो रहा है। वियतनाम के सदर तोलाम आज मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करेंगे। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने की गरज से एक समझौते पर पहुंचने के करीब हैं। और दिल्ली में साल 2026 के दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिलेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज पहला साल पूरा हो रहा है। वियतनाम के सदर टोलाम आज मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करेंगे। अमेरिका और ईरान मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने की गर्ज से एक समझौते पर पहुंचने के करीब हैं। फ्रांस ने अपने एक जहाज बरदार 40 डी गौले को ग्रुप को बहरे अहमर में पहुंचा दिया है ताकि आबनाए हुर्मुज को सफर के लिए महफूज बनाया जा सके। और दिल्ली में 2026 की दौलत मुश्तरक टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाएगा। ये थी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, दिन के 1:15 पर चाहते हैं यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: तमान और नीतू सिंह के लिए ये पहली व्यावसायिक सफल हिंदी फिल्म रही और दोनों 1970 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री बनी। संगीतकार आरडी वर्मन द्वारा रचित अपने गीतों के लिए भी फिल्म को याद किया जाता है, खासकर रफी साहब और आशा भोसले की आवाज का गीत चुरा लिया है विशेष रूप से याद किया जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है 1973 में रिलीज फिल्म यादों की बारात। आपके साथ मैं अर्चना गोयल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अभी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब बारी है आपके ईमेल शामिल करने की, और ये मैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्य मल्होत्रा। ये लिखते हैं कि जल है तो जीवन है। तो वाकई सुनील जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और ये लिख रहे हैं कि यादों की बारात के गीत और कहानी आपकी जवानी सुनी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और आपकी शानदार पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और ये मैसेज मिला है नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामु देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का। आप हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी। और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से। और ये हैं महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपक दीपा रिमझिम गुप्ता। जलालाबाद बैस से ये हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप कुरनूर, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। तो आप सबके मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और अब आपको फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से बता दें। आपको बता दें कि चुरा लिया है तुमने गाने में जो गिटार की धुन है वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा है। ये फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड थीम पर आधारित थी और बाद में इसी तरह की कई फिल्में बनी और ये एक ट्रेंड सेंटर फिल्म साबित हुई। और खास बात ये कि फिल्म में आमिर खान को बतौर चाइल्ड पहली बार स्क्रीन पर दिखाया गया था।

और आइए अब आपको इस फिल्म की कहानी बता दें। ये फिल्म है तीन भाइयों की, शंकर यानी धर्मेंद्र, विजय यानी विजय अरोड़ा और रतन यानी तारिक शाह। एक दिन उनके पिता के जन्मदिन पर उनकी माँ तीनों को यादों की बारात ये गाना सिखाती है। एक दिन उनके पिता शाकाल और उसके गुंडों को डाका डालते हुए देख लेते हैं। उनके पुलिस में जाने से पहले ही गुंडे उन तीनों के माता पिता की हत्या कर देते हैं। शंकर और विजय ये देख लेते हैं और भाग जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई आपस में बिछुड़ जाते हैं। शंकर को अपने माता पिता की हत्या का आज तक घबराहट है। वो अपने दोस्त उस्मान के साथ शहर में अपराध करने लगता है। विजय को एक अमीर आदमी गोद ले लेते हैं और वो सुनीता यानी जीनत अमान से प्यार करने लगता है। रतन जिसे उसके घर में काम करने वाली पालती है और उसका नाम मोंटू रख देती है। मोंटू अपनी पहचान के साथ अपना बैंड बनाता है और होटल में काम करने लगता है। वहां गायिका नीतू सिंह से प्यार करने लगता है। तीनों भाई कई बार एक दूसरे से मिलते हैं पर पहचान नहीं पाते। मोंटू और विजय जब गाने के कारण मिलते हैं तो शंकर को भी पता चल जाता है कि वो दोनों उनके भाई हैं, लेकिन शंकर को उसका बॉस पकड़ लेता है जो उनके माता पिता का असली कातिल है। जब शंकर को असलियत पता चलती है तो शाकाल को ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए छोड़ देता है और तीनों भाई फिर आपस में मिल जाते हैं और इस तरह सुखद अंत होता है।

और अब आपकी मैसेज। और ये मैसेज हमें मिला है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर का, पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से। और दूसरा मैसेज है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का, दंतरेखी से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पी एस नवाटकर, निर्मला और विशाल, आप हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ से। और ये मैसेज हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का, इशाक मोहम्मद का ये मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगा नगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आप हैं मन शर्मा, इनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, आप हैं मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, राजू अग्रवाल, चौधरी वास से। तो आप सब ने अपने मैसेज सुन लिए और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम

ये आखिरी पड़ाव की ओर। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, पर वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं और फिर एक दिन कोई धुन, कोई याद उन्हें वापस ले आती है। तो अब वक्त है उस गाने का जो हर दिल को छू जाता है।

दोस्तों, उम्मीद है आपको यादों भरा सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही फिल्मों के किस्से, यादें और संगीत लेकर हम फिर आएंगे। तब तक अपनी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार, आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 1:40 होने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: होवांगे फौजी विदा लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। ईडी वल्लों ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस संबंधी धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 थावां ते छापेमारी की जा रही है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरीकंढ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दहशतगर्दा नूं हराउण अते दहशतगर्दी के तंत्र नूं खत्म करन दे अपने इरादे ते डोले। बिहार विच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बागवानी खेतर ते वधेरे ध्यान केंद्रित करने लई एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आईपीएल क्रिकेट विच अज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ विच शामी 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु नाल होगा। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी GMADA तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस प्राप्त करने विच वड्डी पद्धर ते जालसाजी अते सैकड़े करोड़ इकट्ठे करने लई जनता नाल धोखाधड़ी दे संबंध विच पंजाब विच मोहाली ते चंडीगढ़ विच 12 थावां ते तलाशी लै रहा है। ईडी मुताबिक नितिन गोयल नाल जुड़ियां थावां ते तलाशी

0: भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज को उनकी शुजात के लिए सलाम करता है। हमारे नामा निगार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी मुसल्ला अफवाज की पेशावराना सलाहियत और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल का सबूत है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें तलफ हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल लाइन के उस पार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसे तबाह करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत की मुसल्ला अफवाज ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों, उन्हें तरबियत देने वालों, उनके आकाओं और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेशतर दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और वह जंगबंदी के लिए मजबूर हो गया। इस ऑपरेशन को भारत की दिफाई तारीख में कौमी अज़्म मुसम्मम, फौज की शानदार कारकर्दगी और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल के तौर पर याद रखा जाएगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी से निमटने के भारत के पुख्ता अज़्म और उन सभी कुव्वतों के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई करार दिया जिनसे मुल्क के इख्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज को खतरा लाहिक है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहलगाम के वहशियाना हमले का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को आज एक बरस मुकम्मल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी के एजाज में सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को तब्दील किया है। उन्होंने हमवतनों पर भी जोर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज के एहतराम और उनकी कामयाबी के लिए सोशल मीडिया के अपने सभी हैंडल पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर तब्दील करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्ला अफवाज ने गैर मामूली शुजात, मखसूस कार्रवाई की अपनी सलाहियत और पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया था। भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी का एक मजबूत और मखसूस जवाब था। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क के इस मुंहतोड़ जवाब को उजागर किया।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। विजय की गवर्नर से ये दूसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि गवर्नर ने ही विजय को मुलाकात के लिए बुलाया था। इस बात का इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद गवर्नर केरलम के लिए रवाना हो जाएंगे। विजय ने कल भी गवर्नर से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी पार्टी के 9 मुंतखब एमएलए की फेहरिस्त नीज कांग्रेस की तरफ से हिमायत से मुतालिक मकतूब सौंपा था। वीसी के रहनुमा तिरुमवलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज होने वाली लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के बाद ये तय करेगी कि आया विजय की पार्टी की हिमायत की जाए या नहीं। उनकी पार्टी से 2 एमएलएज हैं। लेफ्ट जमातों ने गवर्नर से अपील की है कि सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अक्सरियत असेंबली में साबित की जा सकती है। तमिलनाडु में डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी अवाम के दिए गए इस फैसले की इज्जत करती है कि एक नई पार्टी रियासत में बरसरे इख्तदार आए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी दोबारा इंतखाब कराना या कोई आईनी बहरान नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई हुकूमत की तश्कील की राह में नहीं आएगी। जनाब स्टालिन ने इन अफवाहों को मुस्तरद किया कि नई हुकूमत साजी के लिए डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान बातचीत चल रही है। पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने की राह हमवार हो गई है। वजीर आला ने राजनिवास

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर को साथी तौर पर इस्तीफा सौंपा। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के पेश नजर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुदुचेरी की 15वीं कानून साज असेंबली को तहलील किए जाने के अहकाम जारी किए थे। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज अपनी हुकूमत में तौसी की है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को काबीना में बतौर वुजरा हलफ दिलाया गया। इनमें भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन साहनी, संतोष कुमार सुमन, रामकृपाल यादव, नितिन मिश्रा, दामोदर यादव, संजय सिंह और अशोक चौधरी शामिल हैं। पटना के गांधी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के अलावा मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा और काबीना के मेंबर शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दी है कि आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों को निकालने की खातिर मनसूबाबंद बहरी कार्रवाई को रोक दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से इस मिशन में अमरीकी तैयारे के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इतवार के रोज ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से हैरान हो गए थे। खबरों में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, लेकिन वो मुआहिदा करने में नाकाम रहे। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने मई की 9 तारीख को यौम फतह की तकरीबात में रखना डालने की कोशिश की तो कीफ पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस की वजारत दिफा ने सिफारती मिशनों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों को मशविरा दिया है कि वो एहतियात के तौर पर कीफ से अपने अमले और शहरियों को निकाल लें। यौम फतह रूस की सबसे ज्यादा अहम कौमी तातीलात में से एक है और ये दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की कामयाबी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे कबल कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 236 रन का निशाना दिया था, लेकिन वो 202 रन ही बना पाई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निजाम को नीस्तो नाबूद करने के भारत के अज्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary expands his cabinet. 32 ministers, including Nitish Kumar's son, take oath as new ministers. Hectic parleys underway to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to face Royal Challengers Bengaluru in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. The Prime Minister said Operation Sindoor reflected India's firm response against

0: शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र।

0: भव सव्यसाचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा

0: चुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनके शब्दों में देशभक्ति की आग भी है और प्यार भी, नरमाहट भी। आज की महफिल में हम बात करेंगे महान संगीतकार, गीतकार और देशभक्त प्रेम धवन की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म काबुली बाला के गीत से।

प्रेम धवन का जन्म 13 जून 1923 को अंबाला में हुआ और लाहौर में स्नातक की शिक्षा पूरी की। आपने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे। प्रेम धवन न केवल गीतकार थे वरन आपने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत दिया, नृत्य निर्देशन किया और अभिनय तक किया। उन्होंने पंडित रविशंकर से संगीत एवं पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रेम धवन ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में लाहौर में ख्वाजा खुर्शीद अनवर गीतकार के असिस्टेंट के तौर पर फिल्म कल आज और कल के लिए की। बाद में वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने रविशंकर के संग शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फिल्म धरती के लाल से गीतकार के रूप में शुरुआत की। इसके बाद लगातार सन 1989 तक उन्होंने अनगिनत गीत लिखे, जिनमें आराम, शोला और शबनम, काबलीवाला, एक फूल दो माली, पूरब और पश्चिम शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, जिसमें शामिल है मनोज कुमार द्वारा निर्मित फिल्म शहीद का संगीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं प्रेम धवन। आपके साथ मैं अर्चना गोयल। दोस्तों, प्रेम धवन ने अपने करियर में गीतकार और संगीतकार के अलावा दो फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें 1950 में आई फिल्म लाजवाब और 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इसके साथ साथ उन्होंने 7 फिल्मों में कोरियोग्राफर के तौर पर काम भी किया, हालांकि उसमें प्रेम धवन को ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने 1970 में उनको सिविलियंस अवार्ड पद्मश्री प्रदान किया। 1971 में नानक दुखिया सब संसार के गीतों के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट लिरिक्स के लिए मिला और 1980 के दशक में उनका करियर कोई खास कार्य नहीं कर पाया, सिवाय 1989 में आई फिल्म अपूर्वा सगोदरारगल के। उनकी मृत्यु 7 मई 2001 को 77 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हो गई।

गीतकार के तौर पर उनकी फिल्में रहीं वचन, तांगे वाली, जागते रहो, हीरा मोती, जबक, काबलीवाला, मां बेटा, शबनम, शहीद, 10 लाख, मेरा नाम जोकर, गीत, पूरब और पश्चिम, पवित्र पापी, एक फूल दो माली जैसी फिल्में शामिल थी। संगीतकार के रूप में उनकी फिल्में रहीं भारत के शहीद, आधी रात के बाद, किसान और भगवान, पवित्र पापी, शहीद, मेरा देश मेरा धर्म जैसी फिल्में रहीं। कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्में थीं वक्त, धूल का फूल, दो फूल, सहारा, नया दौर, वचन, दो बीघा जमीन, आरजू, शीश महल और गूंज उठी शहनाई।

दोस्तों, प्रेम धवन का मानना था कि गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। उनके गीतों में एक विचार होता था, एक संदेश होता था। उनकी यही सोच उन्हें बाकी गीतकारों से अलग बनाती है। दोस्तों, प्रेम धवन जैसे कलाकार सिर्फ गाने नहीं लिखते, वो इतिहास लिखते हैं, भावनाएं लिखते हैं। उनकी कलम से निकले शब्द आज भी हमें जोड़ते हैं और प्रेरित करते हैं।

इसी के साथ आज की महफिल को यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई आवाज के साथ। तब तक के लिए अर्चना गोयल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सामिन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सहपैर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के पर।

सपहर 3:30 बजे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर मबनी ड्रामा सुनेंगे इख्तिताम। इसको रेडियाई रूप दिया है मोहतरमा रूपा श्री कुमार ने। शाम 4 बजे अब लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। बिहार के वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने अपनी काबीना में तौसी की है और नीतीश कुमार के बेटे समेत 32 वज़रा को नए वजीरों के तौर पर हलफ दिलाया गया है। तमिलनाडु और केरलम में सरकारों की तश्कील के लिए सरगर्म बातचीत जारी है। सरकार ने नए लेबर जाब्तों के तहत 40 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले वर्करों के लिए मुल्क भर में सेहत की सालाना जांच का आगाज किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी को मात देने और इसके ढांचे को तहस नहस करने के अपने आज़म पर साबित कदम है। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के मौके पर कही। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत की मुसल्ला फौजों ने ऑपरेशन के दौरान अपनी शुजात, बहादुरी और ऐसी जुरत का मुजाहरा किया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की जुरत करने वालों को भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज की उनकी शजाअत के लिए सलाम पेश करता है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें तलफ हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल लाइन के उस पार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसे तबाह करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत की मुसल्ला फौज ने बेहतरीन तालमेल

0: मेहनत रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज मेहनत के नए जाब्तों के तहत 40 और उससे ज्यादा उम्र के कारकुनान के लिए एक मुल्कगीर सालाना सेहत चेकअप का आगाज किया है। नई दिल्ली में ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस पहल का आगाज करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़श्ता 12 साल में मुल्क की अफरादी कुव्वत और नौजवानों के तई इज्जत व एहतराम में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही है और इसके नतीजे में बेरोजगारी की शरह कम होकर तकरीबन 3.2 हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के रास्ते जहाजों को निकालने की खातिर मनसूबाबंद बहरी कार्रवाई को रोक दिया गया है। सऊदी अरब की जानिब से इस मिशन में अमरीकी तैयारे के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इतवार के रोज ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से हैरान हो गए थे। खबरों में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की लेकिन वो मुआयदा करने में नाकाम रहे। इधर अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में जंग को खत्म किया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे कबल कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स की जीत के लिए 236 रन का निशाना दिया था लेकिन वो 202 रन ही बना पाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने अपनी काबीना में तौसी की है और नीतीश कुमार के बेटे समेत 32 वजरा को नए वजीरों के तौर पर हलफ दिलाया गया है। तमिलनाडु और केरलम में सरकारों की तश्कील के लिए सरगर्म बातचीत जारी है। सरकार ने नए लेबर जाब्तों के तहत 40 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले वर्करों के लिए मुल्क भर में सेहत की सालाना जांच का आगाज किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीटी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद वो नगमे आपकी नजर करते हैं जिन्हें कलम बंद किया या फिर मौसीकी से सजाया। फनकार हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के जिनको हमेशा याद किया जाएगा आज उनकी बरसी है और नाम है उनका प्रेम धवन। 13 जून 1923 को आप लाहौर में पैदा हुए, अम्बाला में पैदा हुए और उसके बाद वो लाहौर चले गए। वहां से उनकी तालीम की शुरुआत हुई और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुंबई आ गए जहां वो इप्टा से मुंसलिक हो गए और हुब्बुल वतनी के नगमों के लिए खास तौर पे उनको जाना जाता है। 1948 में मंजर-ए-आम पर आई फिल्म जिद्दी से उन्होंने एक नगमा निगार के तौर पर अपने फिल्मी करियर का आगाज किया लेकिन खास पहचान उन्हें मिली शहीद और पूरा पश्चिम जैसी फिल्मों से। वो न सिर्फ एक नगमा निगार थे बल्कि एक बहुत उम्दा कोरियोग्राफर और मौसीकार भी थे। उन्होंने हिंदी फिल्मी सनत में कई फिल्मों में कोरियोग्राफर की अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल किया। 1971 में उन्हें हुकूमत ने पद्मश्री से नवाजा और 7 मई 2001 को इस अजीम फनकार का इंतकाल हो गया लेकिन उनके जरिए बनाए गए सभी नगमे चाहे उन्हें कलमबंद किया हो या फिर मौसीकी तरतीब दी हो वो हमेशा याद रहेंगे और ख़ास तौर पर हुब्बुल वतनी के नगमे। तो आइए चंद नगमे उन्हीं के मौसीकी

धवन ने मौसीकी तरतीब दी रवि ने, और इसी कॉम्बिनेशन में एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म है 10 लाख।

और जब सुनी शहीद फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, जिसके मौसीकी तरतीब थी प्रेम धवन ने और इस नगमे को लिखा भी उन्होंने ही।

ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप हमारी नशियात सुन रही हैं। इख्तिताम, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर मबनी ये ड्रामा सुनिए। इसको रेडियो रूप दिया है मोहतरमा रूपा श्री कुमार ने।

0: लो घाट आ गया बाबू, संभल कर उतरना, फिसलन बहुत है, सामान हम उतारे देते हैं।
1: अरे नहीं माजी काका, सामान कौन ज्यादा है।
0: भैया संभल कर।
1: हाँ। अरे
0: ओहो, ऐसे हड़बड़ा के क्यों उतरे बाबू? अरे हमने तो पहले ही कह दिया था कि कीचड़ की वजह से फिसलन हो गई है। अब उठो उठो, हाथ पकड़ो हमारा। ऐसे शाबाश बाबू, कहीं चोट तो नहीं लगी?
1: नहीं चोट तो नहीं लगी, मगर शॉल कीचड़ से खराब हो गई है, ये मेरा बैग भी गीला हो गया।
0: अब चलिए आगे आगे।
1: ये लड़की हंसी जा रही है पागलों की तरह।
0: ये मीनू है, मीनू।
1: मीनू?
0: हाँ, ईशान बाबू की लड़की। अरे बड़ी शरारती और खिलंदड़ी है। गांव में दिन भर ऊधम मचाने के अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है। मगर बाबू एक बात है, दिल की बहुत अच्छी है।
1: हाँ, लेकिन किसी के गिरने पर इस तरह हंसने से ऐसा नहीं लगता कि वो गिरने वाले का मजाक उड़ा रही हो।
0: अरे ना समझ है बाबू, बड़ी होगी तो अकल आ जाएगी।
1: लेकिन देखने में तो इतनी लंबी
0: है। उम्र ज्यादा नहीं है बाबू, अभी बच्ची है।
1: बच्ची है।
0: लो बाबू घर आ गया।
1: अच्छा काका,
0: ये तुम्हारा सामान।
1: ठीक है ठीक है,
0: तो हम चलें बाबू। राम राम।
1: राम राम। राम राम काका। राम राम।
2: अरे अब्बू तू
1: पायलो घुमा
2: झुक झुकती हो बेटा, आने की

0: चिट्ठी नहीं, खत नहीं, अचानक कैसे आना हो गया?
1: मैम, इम्तिहान की तैयारी में लगा रहा, इसीलिए चिट्ठी नहीं लिखी। बीए का इम्तिहान था ना।
0: अच्छा अच्छा, नहा धो ले, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ।
1: ठीक है।
0: अरे तेरे कपड़े तो कीचड़ में सने हैं, गिर गया था क्या?
1: ओ मैम, घाट पर कीचड़ थी, सामान लेकर नाव से उतर रहा था, पैर फिसल गया मेरा।
0: कोई बात नहीं, चल जल्दी से नहा ले, कपड़े छोड़ देना, मैं धो दूंगी।
1: अच्छा मां। आज बहुत दिनों के बाद भरपेट खाया है माँ। तेरे हाथ की बनी रोटी का मजा और कहीं नहीं मिलता।
0: अब मैं कब तक बैठी रहूंगी बना बना के खिलाने को। बेटा, अब घर में बहू ले आ।
1: माँ, तुझे तो हर बात पर बहू सोचती है। पहले भी जब जब कॉलेज की छुट्टियों में कलकत्ते से आया हूँ, तूने ब्याह की बात ही की है।
0: तो कौन गलत बात कही है मैंने? अरे मैं कोई अमर पट्टा लिखा कर लाई हूँ? यही चाहती हूँ, इन आंखों से तेरा बसा घर देख लूँ। तूने कहा था जब पढ़ाई निबट लेगी तब करूंगा ब्याह। अब पढ़ाई खत्म हो गई है, अब भर हामी।
1: अब मैंने कब मना किया है माँ, अब कर लूंगा जरूर।
0: अरे फिर मैं आज ही जाकर बात पक्की कर लेती हूँ, लड़की मेरी देखी है?
1: माँ, बात पक्की करने से पहले मैं भी लड़की को देखूंगा।
0: तू क्या लड़की देखेगा जब मेरी देखी भाली है? अब तू फिक्र मत कर।
1: ना माँ ना, बात यूं ना बनेगी, ब्याह मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। पहले लड़की दिखा दे, फिर मैं हाँ या ना बोलूंगा।
0: अच्छा बाबा, जैसी तेरी मर्जी, जाकर उन लोगों से बात करूंगी कि तू लड़की देखना चाहता है।
2: आइए आइए आइए, अपूर कुमार जी आइए।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, भगवान आपको सदा सुखी रखे। आइए आइए, अंदर आइए आइए, बैठिए।
1: शुक्रिया। वो माता जी ने,
2: कल उनकी बात हुई थी मेरी घरवाली से, हमें क्या एतराज हो सकता है?
1: जी हाँ, लेकिन वो लड़की की राय भी जाननी चाहिए।
2: मेरी लड़की तो अभी बहुत नादान है, राय तो आपकी है।
1: फिर भी
2: हाँ, तो बीए तो आपने कर लिया है, आगे क्या करने का ख्याल है?
1: सोचता हूँ कानून भी कर लूँ, फिर कलकत्ते में वकालत करूँ।
2: अच्छा अच्छा, अरे ये संदेश लीजिए पूर्व बाबू
1: जी।
2: अरे राखाल बेटे, तुम उधर बैठे क्या कर रहे हो? नमस्ते नहीं करोगे पूर्व बाबू को?
3: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
2: ये लड़की का छोटा भाई है राखाल, बहुत खिलाड़ी है। राखाल बेटे, क्या देर है, बहन को ले आओ ना।
3: वो आ रही है महाराजिन के साथ।
2: अच्छा अच्छा, अरे अपूर बाबू, ये खीर मोहन तो आपने खाया ही ना, लीजिए ना।
1: जी जी
2: लीजिए लीजिए जी, आओ बेटा आओ आओ, महाराजिन इधर बैठाओ, यहाँ अरे सामने वाली कुर्सी पर।
4: जी अच्छा।
2: अपूर बाबू, आप चाहे तो बात कर सकते हैं।
1: जी हमें बताएंगी आप क्या पढ़ती हैं? अरे बताइए ना, क्या पढ़ती हैं आप?
2: हाँ बेटी बता दो, तुम क्या पढ़ती हो बताओ।
5: हिसाब का पहला हिस्सा, ज्योग्राफी का दूसरा हिस्सा, तारीख हिंदुस्तान की। राखल ये राखल।
3: अरे मीनू तुम
5: ना बेटा, क्या कर रहे? चल बाहर खेलेंगे, चल भी उठना। ओफो, पागल किंग का हुड़दंग ये कहीं की, किसने बुलाया था तुझे? जाती है या नहीं? देखती नहीं मेहमान आए हैं?
2: इन दोनों की दिन भर ऐसे ही धींगा मुश्ती चलती है।
5: उठता या नहीं? नहीं तो ले।
3: क्यों मारती हो?
5: और तू क्या कर रही है मुंह ढके? सांस भी नहीं आ रही होगी, चल पल्ला खोल। अच्छा मैं ही खोल देती हूँ।
3: हाँ जी, खुल गया मुंह, खुल गया मुंह।
2: ये बच्चे बड़े शरारती हैं, देखा आपने? राखाल भी भाग गया, कैसे मनमानी करते हैं, किसी बात का ख्याल नहीं।
1: जी मैं अब इजाजत लूं।
2: वो मैं कैसे कहूं,
1: मेरे बूट थे यहाँ उतारे थे मैंने।
2: नहीं है क्या?
1: नहीं।
2: गए कहाँ?
1: वो कहाँ जा सकते हैं?
2: जब आपने यहाँ उतार

0: हैं तो यहीं कहीं होंगे, इधर उधर हो गए होंगे इन बच्चों की भाग दौड़ में, मिल जाएंगे जरूर, मैं भिजवा दूंगा। इस वक्त आप मेरी हैं, ये चप्पल पहन जाइए ना।
1: जी
0: जी पहन जाइए।
1: यही पहन लेता हूँ। आपका शुक्रिया। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। लंबी उम्र हो, सुखी रहो।

0: ये तो मीनू है, इधर ही आ रही है मेरे बूट हाथों में लेकर। कहां भाग कर जा रही हो जूते रखकर?
1: ये पकड़ लिया।
2: छोड़ मुझे, छोड़ देना।
0: आप छुड़ाओ हाथ। अरे कितना ही जोर लगाओ, नहीं छोड़ूंगा मैं, बहुत ताकत है ना, और लगाओ जोर।
2: अब नहीं उठाऊंगी बूट, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
0: ठीक है, छोड़ देता हूं। जाओ बन की हिरनी, जाओ।
3: क्यों रे अपूर्व, देखा है लड़की कैसी लगी, पसंद आई?
0: देखा है माँ, उनमें से एक लड़की पसंद भी आ गई है।
3: एक लड़की पसंद भी आ गई है? माने ऐसी कितनी लड़कियां तो देखाया वहां, जो उनमें से एक पसंद आ गई?
0: माँ तुमने मुझे वहां लड़की देखने के लिए भेजा था।
3: हाँ,
0: ये जरूरी तो नहीं कि जिस लड़की को देखूं वो मुझे पसंद भी आ जाए।
3: नहीं।
0: और माँ वहां मैंने एक लड़की देखी जो मुझे पसंद आ गई।
3: तब तो मैं जाकर उनसे सगाई की बात पक्की करती हूँ। कौन है वो खुशनसीब?
0: ईशान बाबू की लड़की
3: मीनू।
0: हाँ माँ, मीनू।
3: ये मैं क्या सुन रही हूँ अपूर्व, इतना पढ़ लिख कर पत्थर पड़ गए तेरी अकल पर? लड़की कहलाने लायक है वो? लड़कों जैसी लंबी तड़ंगी, लड़कों के बीच कुदर करे मारने वाली।
0: अरे माँ उसकी खूबियाँ नहीं दिखाई देती तुम्हें?
3: कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं उसमें?
0: माँ अच्छाई बुराई की गिनती करने का कोई फायदा नहीं है, मीनू मुझे पसंद है, मैं उसके सिवा किसी से ब्याह नहीं करूंगा। तुम जाकर मीनू के घर में बात पक्की कर लो, और हाँ शादी की तारीख सब जल्दी तय करना।
3: जैसी तेरी मर्जी बेटा, बहू को गृहस्थी लायक बनाने में पापड़ तो मुझे ही बेलने पड़ेंगे।
0: अब तुझे जो भी करना पड़े माँ, मेरा ये पक्का फैसला है।
3: ठीक है, जाऊंगी मीनू की माँ के पास।

0: मीनू अरे ओ मीनू
1: क्या है माँ?
0: वहां से ही कहेगी क्या है माँ। अरे सब बातें चिल्ला कर कहने की नहीं होती हैं।
2: हाँ माँ कहो।
0: मीनू अब कुछ दिनों में तू अपनी ससुराल चली जाएगी, तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आ इधर बैठ जाकर।
2: हाँ जल्दी जल्दी बताओ ना क्या बात है।
0: ओफो तू तो हर बात घोड़े पर सवार रहती है, तुझे काहे की जल्दी है ये तो बता। अरे ससुराल में ऐसे करेगी तो भला कितने दिन वो रखेंगे तुझे।
2: फिर वही ससुराल, अभी मैं अपने घर ही में हूँ माँ। कहो ना क्या कह रही थी।
0: वहाँ जाकर घर में ही रहना, बाहर लड़कों के साथ खेलने मत निकल जाना।
2: अच्छा और?
0: जोर जोर से हंसना बहुओं में बेशर्मी की निशानी माना जाता है।
2: हंसी आए तो धीरे से हंसो, माने हंसो ही नहीं।
0: देख दूसरे घर में जब सब घर वाले खाना खा लें तब बहुओं को खाना चाहिए, ये नहीं कि जब देखो मुंह चल रहा है। समझ गई?
2: मतलब ये कि खेलो भी मत, हंसो भी मत, खाओ भी मत। मतलब ये कि ब्याह क्या हुआ, उम्र भर की कैद का हुक्म हुआ।
0: वो ज्यादा बकबक नहीं करते मीनू।
2: मैं साफ कह देती हूँ माँ, मैं ब्याह व्याह नहीं करूँगी।
0: ऐसी बात मुंह से मत निकाल बेटा, कैसा अच्छा घर भर है। अरे हमारे तो भाग खुल गए, नहीं तो इतनी बड़ी हो गई तू किसी ने ब्याह की बात चलाई अभी तक? अरे उन्होंने तो इसी महीने की तारीख निकलवा रखी है।
1: मीनू की माँ
0: लो बहन जी भी आ गई।
2: माँ मैं तो चली।
0: आओ बहन जी आओ। राम राम
1: राम राम बहन, क्या हो रहा है?
0: कुछ भी नहीं ऐसी।

0: मीनू को समझा रही थी बहन जी।
1: बच्ची है बहन, जैसी तुम्हें प्यारी वैसी हमें भी है। मैं इसे ठप्पे लगा लूंगी आहिस्ते आहिस्ते, तुम फिक्र मत करो। मीनू के पिता कब आ रहे हैं?
0: कहाँ बहन जी, उनकी चिट्ठी आई है, लिखा है ब्याह के लिए छुट्टी की अर्जी दी थी, बड़े साहब ने मंजूर नहीं की, कह दिया पूजा प्रसाद दिन की छुट्टी होगी तभी लड़की का ब्याह कर देना। तो बहन जी इस महीने तो वो आ नहीं सकेंगे, अब आप देखो उनके बिना ब्याह कैसा रहेगा भला। क्यों ना पूजा के दिनों में कर ले बहन जी, वो दिन तो बहुत अच्छे होते हैं।
1: ना बहन ना, बड़ी मुश्किल से तो अपूर्व ब्याह करने को राजी हुआ है, अब और देर नहीं कर सकूंगी मैं।
0: जैसे तुम कहो बहन जी, अब हम तुमसे बाहर थोड़े ही हैं, मीनू के बापू को लिख दूंगी। अच्छा काम भला क्यों रोका जाए, इस महीने वाले साई पर ही लड़की के हाथ पीले किए देते हैं।
1: हाँ, तो मीनू की माँ इस महीने का लगन पता रहा ना?
0: हाँ बहन जी पक्का।
1: अच्छा मैं चलती हूँ, राम राम।
0: राम राम।

0: बहू रानी, पुरानी कहावत है आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में काम आता है, तो हमारी बड़े आराम और इज्जत से कट गई।
1: माँ जी, मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे आप कहेंगी।
0: देखो बहू, अब मुझसे बोलते हुए झटके से तुम्हारे मुंह का पल्ला ऊपर हो गया। मुंह ठका रहना चाहिए, अच्छा मालूम होता है।
1: हाँ माँ जी, ढक लेती हूँ।
0: हाँ, हमारी सास ने हमसे कहा, बहू रानी तुम्हारी आवाज बाहर मर्दाने में नहीं सुनाई देनी चाहिए, और हंसी तो कभी भी नहीं। हंसो पर मुंह में हंसो, दबी हंसी हंसो। अरे अरे, सोच रही बहू। बहू रानी, तुमने ये घूंघट फिर हटा दिया।
1: दम घुटने लगा, सांस नहीं ली जा रही थी, इसीलिए पल्ला ऊपर कर दिया।
0: देख लो बहू रानी, हम तो बता ही सकते हैं, करना ना करना तुम्हारा काम है। अच्छा चलो रसोई देखूं, आपको आता होगा।
2: मीनू, ए मीनू,
1: क्या है?
2: नींद नहीं आ रही?
1: नहीं।
2: क्यों?
1: क्यों?
2: हाँ
1: मालूम नहीं।
2: एक बात बताओगी?
1: क्या?
2: तुम मुझे प्यार नहीं करती?
1: नहीं, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी।
2: क्यों? मुझसे क्या खता हुई है?
1: तुमने मेरे साथ शादी क्यों की?
2: अरे तुम मुझे अच्छी लगती हो।
1: मैं अच्छी नहीं हूँ।
2: अरे मैं कहता हूँ तुम अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी हो।
1: नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ।
2: तुम हो।
1: मैं नहीं हूँ।
2: हो?
1: नहीं।
2: अरे हो।
1: नहीं नहीं नहीं।
2: अच्छा आधी रात को शोर मत मचाओ।
1: शोर तुम मचा रहे हो।
2: अच्छा बाबा, मैं ही शोर मचा रहा हूँ, अब सो जाओ।
1: नींद आएगी तो सो जाऊंगी।

0: पोस्टमैन
1: जी
0: चिट्ठी ले ला जी।
1: लाइए देखो तो किसकी चिट्ठी है। माँ ये चिट्ठी मीनू के नाम है, उसके पिताजी की है।
2: बाबूरानी इधर आओ, तुम्हारे पिता का खत आया है।
3: बाबा का खत आया है?
1: हाँ मैं पढ़ता हूँ। बेटी मीनू सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारी शादी में शामिल ना हो सका इसका बहुत अफसोस है। नौकरी की मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकता था मैं। खैर जो हो, तुम और अपूर्व बाबू दोनों खुशहाल और आबाद रहो। तुम्हारा पिता ईशान मजुमदार।
3: मैं बाबा के पास जाऊंगी।
2: तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं कोई ठिकाना नहीं है, कहती है बाबा के पास जाऊंगी।

0: माँ तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बेचारी चुपचाप चली गई।
1: बड़ी बेचारी है ना।
0: अरे उसने तो दरवाजा बंद कर लिया। माँ देखो तो क्या कर रही है।
2: बाबा बाबा तुम मुझे ले जाओ, यहाँ यहाँ मेरा कोई नहीं है बाबा, यहाँ नहीं तो मैं बचूंगी नहीं बाबा।

0: बाबा हम यहां 3 दिन रुकने के ख्याल से आए थे, यहां बहुत मजे में वक्त बीता। अब नाव 1 घंटे में खुलने वाली है, अगर आप इजाजत दें तो हम उसी से लौट जाएं।
1: बेटे मेरे छोटे से टीम के कैबिन में तुम लोगों को आराम कहाँ मिल पाया है। हाँ, तुम लोगों के साथ जो गपशप रही, जो साथ मिलकर खाने पकाए और खाए, उस सब में 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला।
2: सुनो, 2-3 दिन और नहीं ठहर जाए यहाँ?
1: बेटा यहाँ जिंदगी की आसाइशें बहुत कम है। अपूर बाबू तुम्हें मुझसे मिलाने ले आए, ये क्या कुछ कम मेहरबानी है उनकी? अब तुम लोगों का वापस जाना ही मुनासिब है।
0: तो फिर हम लोग निकले, इजाजत दें। नमस्ते।
1: नमस्ते। बेटी बेटी तुम ससुराल में उजाला करना, लक्ष्मी बनकर रहना, मेरी मीनों में कहीं कोई बोला है ना देखने पाए। बेटे
2: पापा
1: मेरी मीनू बेटी सुखी रहो, सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो।

0: अम्मा कॉलेज खुल गया है, मैं अब कानून पढ़ने जाऊंगा।
1: बहू का क्या करोगे?
0: बहू यहीं रहे।
1: नाम अब कोई जरूरत नहीं, तुम उसे अपने साथ ले जाओ।
0: मैम, मीनू को अपने साथ कलकत्ते ले जाने से मेरी पढ़ाई में रुकावट पड़ेगी, और उसकी कोई सहेली भी तो नहीं है। ठीक है, तुम उसे इस घर में रखना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे उसकी माँ के घर पहुंचा दूंगा।
1: जैसी तेरी मर्जी, तू और तेरी बहू।
0: तुम रो रही हो क्यों? मेरे साथ कलकत्ता जाने को तुम्हारा मन नहीं है क्या?
1: नहीं।
0: तुम मुझे प्यार नहीं करती क्या? राखाल को छोड़ने के ख्याल से तुम्हारा मन दुखी हो रहा है? देखो, मैं अब काफी दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा, हो सकता है 2 बरस या उससे भी ज्यादा वक्त लग जाए। तुम्हारे लिए कलकत्ता से कुछ लाऊं?
1: तुम लौटते वक्त राखाल के लिए 3 मुंह वाला चाकू लेते आना।
0: अच्छा, मगर तुम्हारे लिए कुछ?
1: मेरे लिए कुछ नहीं।
0: तो तुम यहीं रहोगी?
1: मैं माँ के यहाँ जाकर रहूंगी।
0: अच्छा, तो फिर रहो। जब तक तुम मुझे आने के लिए खत नहीं लिखोगी, मैं नहीं आऊंगा। देखो, मेरे जाने का वक्त हो गया है, चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़ा हूं।

0: मीनू। हाँ माँ, अब के जब से तू आई है बेटा, मैं देख रही हूँ तू बहुत बदल गई है।
1: नहीं माँ, मैं तो वही हूँ।
0: वही तो है लेकिन बदली हुई।
1: मुझे तो नहीं लगता।
0: अब तू गुमसुम सी रहती है, पहले हंसती बोलती रहती थी।
1: हंसती तो अब भी हूँ माँ।
0: कहाँ, अरे पहले दिन भर घर से बाहर गुजरता था तेरा, फलों के बागीचों में कूदना फांदना, अब तेरा सारा वक्त घर में चुपचाप गुजरता है।
1: क्या बात है मीनू? माँ, न जाने क्यों मेरा जी किसी बात में नहीं लगता, लगता है जैसे उलझन में पड़ी हुई हूँ। सोच रही थी माँ जी अकेली हैं, उनके पास चली जाऊं, पहले उनकी वजह से यहाँ आई थी, अब यहाँ जी नहीं लगता माँ। उनके पास जाने को जी कर रहा है। ओह माँ, कुछ समझ में नहीं आता, जैसे जैसे मैं अपने लिए एक पहेली बन गई हूँ।
0: मीनू, तू वहां जाना चाहती है ना, तो चली जा बेटी, चली जा। बेटा, ब्याह के बाद शोहर का घर ही लड़की का असली घर होता है, अपना महका अजीब अजीब सा लगने लगता है। बेटा, वहां कुछ दिन तू रहेगी ना तो तेरा जी ठीक हो जाएगा।
1: तो मुझे वहां छोड़ आओगी माँ?
0: हाँ बेटी, हाँ। तैयार हो जा बेटा, चल।
2: अरे बहुरानी, आओ मेरे गले से लग जाओ बहुरानी। मैं तुम्हारी सूरत के लिए तरस गई हूँ बहुरानी। अब मत जाना अपने मायके।
1: माँ जी, मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, वहां मेरा जी नहीं लगा, सोचती थी आप यहाँ अकेली हैं।
2: हाँ बहुरानी, मेरा जी भी तुम्हारे लिए बहुत तरसता था। अच्छा किया तुम आ गई, पुरानी कहावत है एक से दो भले।
1: माँ जी,

0: रोम रोम में बसी इस मीठी पीड़ा का क्या करूं? जब तक तुम्हें खत नहीं लिखूंगी तुम आओगे नहीं। ठीक है, लिखती हूं तुम्हें खत। तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? तुम कैसे हो? तुम घर आ जाओ। श्री अपूर्व बाबू कृष्ण राय को कलकत्ता में मिले।
1: रमा की माँ, रमा की माँ।
2: जी बहू रानी।
0: तुम बर्तन मान चुकी?
2: जी हाँ।
0: मेरा एक काम कर दोगी?
2: क्या बहू रानी?
0: ये चिट्ठी डाक के डब्बे में डाल दोगी?
2: ला, जाते हुए डाल देंगे।
0: जरूर डाल देना।
2: अच्छा
3: बहू रानी।
0: हाँ माँ जी।
3: अप्पू बहुत दिनों से घर नहीं आया, सोचती हूँ कलकत्ता जाकर उसे देखाऊं। तुम साथ चलोगी?
0: आप ले चलेंगी तो जरूर चलूंगी माँ जी।
4: अरे माँ, तुम अचानक कैसे आ गई? मुझे खबर तक नहीं थी। और फिर ठहरी भी दीदी और जीजा जी के घर।
3: हाँ।
4: अगर जीजा जी मुझे खबर देकर यहाँ नहीं बुलाते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम कलकत्ता आई हुई हो।
3: अरे वाह, पता कैसे नहीं चलता? तुझसे ही तो मिलने आई हूँ।
4: माँ कलकत्ता आ रही थी तो मीनू को साथ नहीं ला सकती थी? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। ज्यादा देर रुकूंगा तो भीग जाऊंगा।
3: पागल हुआ है बेटा, इस बारिश में तो भीगता हुआ हॉस्टल जाएगा?
5: हाँ हाँ, आज यहीं रह जा।
4: नहीं नहीं, जाना बहुत जरूरी है, बहुत काम पड़ा है माँ।
5: मगर इस बारिश में भीग कर बीमार पड़ गए तो?
3: हाँ अपूर, जिद मत कर, यहीं रुक जा।
5: हाँ हाँ, यहाँ सोने का इंतजाम है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुझे हम लोगों की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तू थका हुआ है ना, चलकर आराम कर ले, बाकी बातें सुबह करेंगे। आ, तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ।
4: चलो।
5: अरे कमरे में अंधेरा, लगता है हवा से बत्ती बुझ गई। कुछ पढ़ने लिखने का मन हो तो बत्ती ला दूं अपूर्व?
4: नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोऊंगा।
5: हाँ अब सो जाओ अपूर्व, अच्छी नींद आएगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। दरवाजा बंद कर लो, मैं जाती हूँ।
4: मीनू को साथ नहीं ला सकती थी माँ। कौन कौन है यहाँ? अरे मेरे पैर कौन छू रहा है? कौन हो तुम, बोलो। अरे तुम मीनू, तुम माँ के साथ ही आई, तो फिर माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? और इसमें रोने की क्या बात है? अरे रोना बंद करो मीनू।
0: नहीं मैं और रोऊंगी।
4: मगर क्यों?
0: तुम मुझसे नाराज हो इसलिए?
4: नहीं नहीं नहीं नहीं मीनू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
0: तो फिर घर क्यों नहीं आए?
4: देखो मैंने कलकत्ता आते वक्त तुम्हें क्या कहा था, जब तक चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं नहीं आऊंगा। तुमने चिट्ठी नहीं लिखी, मैं नहीं आया।
0: मैंने चिट्ठी लिखी थी
4: लेकिन मुझे चिट्ठी नहीं मिली। अच्छा ये बताओ उस पर पता क्या लिखा था?
0: पता, पता क्या होता है?
4: अभी बताता हूं, ये होता है पता।
0: छोड़ो बहुत खराब।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जटक।

उपकार फिल्म का नगमा सुन रहे थे महेंद्र कपूर, मन्ना डे, आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। और जब सुनिए काबुलीवाला फिल्म का ये नगमा, आवाजें हेमंत कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की।

0: टूट गया क्या हाथी
1: नाना,
0: टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी
1: नाना,
0: या फिर तुझे बिछड़ गया तेरा कोई साथी।
1: आ, आ,
0: कौन?
1: काबली वाला।

0: बूढ़ी नानी बड़ी सी आनी पूछूं एक सवाल, कहाँ है कोया काबली वाला, क्या है उसका हाल, बताओ ना बताओ ना।
1: पूरब में एक काल कोठड़ी लगा है जिसपे ताला, कैद उसी में पड़ा हुआ है तेरा काबली वाला।
0: पर कैसे टूटे ताला,
1: तू मंत्र तुझे निराला।
0: क्या क्या
1: टिंग टिंग चट बोल टिंग टिंग टक, खुल जा रे ताले झट से पटक।
0: टिंग टिंग चट बोल टिंग टिंग टक, खुल जा रे ताले झट से पटक।
2: मेरी बच्चे
3: काबली वाले, चलो यहाँ से भाग चले।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म है गीत।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश गूंज उठी शहनाई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, गीता दत्त और साथियों का गाया हुआ।

और लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है वल्ला क्या बात है, मौसीकी रोशन की।

0: दो बीघा जमीन फिल्म के इस नख्मे के साथ ही फिल्मी मौसिकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडेज पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी एयानत करने वाले इको निजाम को निस्तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इआदा किया। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने अपनी काबीना में तौसी की है और नीतीश कुमार के बेटे समेत 32 वजरा को नए वजीरों के तौर पर हलफ दिलाया गया है। तमिलनाडु और केरलम में सरकारों की तश्कील के लिए सरगर्म बातचीत जारी है। सरकार ने नए लेबर जाब्तों के तहत 40 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले वर्करों के लिए मुल्क भर में सेहत की सालाना जांच का आगाज किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी को मात देने और इसके ढांचे को तहस नहस करने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के मौके पर कही। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत की मुसल्लह फौजों ने ऑपरेशन के दौरान अपनी शुजात, बहादुरी और ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की जुर्रत करने वालों को भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्लह फौज को उनकी शुजात के लिए सलाम करता है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें तलफ हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल लाइन के उस पार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसे तबाह करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत की मुसल्लह फौज ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों, उन्हें तरबियत देने वालों, उनके आकाओं और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेशतर दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और वह जंगबंदी के लिए मजबूर हो गया। इस ऑपरेशन को भारत की दिफाई तारीख में कौमी अज़्म मुसम्मम, फौज की शानदार कारकर्दगी और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी से निपटने के भारत के पुख्ता अज़्म और उन सभी कुव्वतों के खिलाफ

0: पर नहीं पहुंच सके। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने मई की 9 तारीख को यौम फतह की तकरीबात में रखना डालने की कोशिश की तो कीव पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस की वजारत दिफा ने सिफारती मिशनों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात के तौर पर कीव से अपने अमले और शहरियों को निकाल लें। यौम फतह रूस की सबसे ज्यादा अहम कौमी तातीलात में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी एयानत करने वाले इको निजाम को नेस्तो नाबूद करने के भारत के अजम का इयादा किया। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने अपनी काबीना में तौसी की है और नीतीश कुमार के बेटे समेत 32 वजरा को नए वजीरों के तौर पर हलफ दिलाया गया है। और तमिलनाडु और केरलम में सरकारों की तश्कील के लिए सरगर्म बातचीत जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे हां सराइकी प्रोग्राम झोक माही दी।

ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडी सेवा विच। प्रोग्राम घिन के कुछ बाता कुछ गीत इस विच असा तुहाडे नाल गाला भी करे सा ते सिराई की गीता दा स्वाद भी घिन सा। ता पहला सुनेंदे हां ए सिराई की गीत आबिदा परवीन दी आवाज विच।

गीत तुसा सुना है, पसंद आया होसी? भेनो भिरावो, आजकल खाना बेकार केड़ा थींदा है। घरा विच खाना बहु बन वेंदा है ता खावन आले घट ते खाना सुटना पैसी। हुन शादिया विच तुसा डेदे हो, खाना बहु बर्बाद होंदा है। बहु तरह दे खाने होंदे ते लोग हिक शै घिनदे हिन, थोड़ा जिन्ना खांदे ते बाकी सुट देंदे हिन। इस तरह दावता विच 15-20% खावन आली शै बर्बाद थींदिया हिन। दूजे पासे दे दो ता लखा लोगां को दुई जने दी रोटी नसीब चैनी होंदी। अंकड़े दसेंदे हिन कि दुनिया भर विच हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद थींदा है। अमरीका विच 30% खाना कूड़ेदान विच सुटेंदे हिन। सोचण दी गल है ते दुए पासे दुनिया दे 7 लोगां विचों हिक नू भूखे सोना पौंदा ते 5 साल तू छोटे हजारा बाल भूख कारण मर वेंदे। केडी अफसोस दी गल है ना। वड्डे ते अमीर घरां विच, रेस्तरां विच, सुपर बाजारां विच खाना ते खाना बनावण दी शै दी बर्बादी आम थी गई है। इस नाल वातावरण भी खराब थींदा है, क्योंकि इकट्ठे होवण आले कूड़े विचों बो आवदी है। वला किसानां दा पैसा, खाद, कीड़ा मारण आलियां दवाइयां, पानी जिन्हां विच फसलां तैयार थींदियां हन, सारा कुछ बर्बाद थी वेंदा। इस नाल बहु भुख्यां दा डिड भरिया जा सकदा है। इस किते खाने को कदहा भी बर्बाद ना करे सा। घर विच खाना उतना ही बनावन जो जितना खादा वेंदा। बचन ते किसी गरीब को दे देवो। दावत विच प्लेट विच उन्हा ही घिनो जितनी भूख थी वे। घर विच दाला सब्जियां उन्हा घिना सा जितनी लोड़ थी वे। नहीं ता गल जा सन, कीड़ा लग जासी ते सुटना पोसी। उंदा लाभ कैनी। ते हुन एक गीत सुना वंजे। बहु वधिया गीत है। ना तू मिल सैं, ना दुख मिट सन, ना मैं इजहार कर सकसा।

0: ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ?
1: ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 11-12 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਪੀਊ? ਸੋ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ
0: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਯਾ ਭਾਰਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
2: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉ. मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: तो पायल बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और देखिए अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं भाई बातचीत जानकारी और भाई समय समय पर अपने कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपने सभी किसान भाइयों को जो है जानकारियां दिलवाते भी रहते हैं और अपने कार्यक्रम के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियां भाई हम भी अपना साझा करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, और भाई इन जानकारियों से निश्चित तौर पर जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं अतुल भाई वो लाभ जरूर उठाते होंगे।
0: बिल्कुल, तो ऐसी एक जानकारी हम भी लेकर आए हैं सहकारी जैविक समिति द्वारा किसानों को लाभ, और इसकी जानकारी दे रहे हैं विपुल मित्तल और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो पायल बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान बहनों भाइयों, किसान की तरक्की के लिए भारत सरकार भी बिल्कुल तत्पर है, और जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया सहकारिता को लेकर, और उनके कई तरह के विंग काम कर रहे हैं, कई तरह की राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं तैयार की गई हैं और अपने काम शुरू कर दिया है। इसी तरह की एक संस्था है NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये क्या किसानों के लिए काम कर रही है, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं NCOL के प्रबंध निदेशक श्री विपुल मित्तल जी। मित्तल जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये संस्था नई है और किस तरह किसानों के लिए काम कर रही है?
3: किसान भाइयों नमस्कार, मुझे ये आपके साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का गठन बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में जनवरी 2023 में किया गया, और इस कम समय में पिछले 2 से 2.5 वर्ष के समय में हमने लगभग 14,000 से अधिक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्थात पैक्स को अपने साथ जोड़ लिया है। तो हमारे 14,000 से अधिक मेंबर्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए सब किसान भाई हमारे मेंबर्स हैं, और अब जो हमारी मुहिम है वो इस तरफ है कि हम कैसे अपने जो ये 14,000 मेंबर्स हैं इनको जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करें। तो भारत सरकार का और हमारा भी ऐसा मानना है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनको बाजार से जुड़ने की है और उनको सही बाजार मूल्य दिलाने की है और उनको उसका प्रीमियम दिलाने की है जो वो जैविक खेती करते हैं। तो उसी तरफ जो हमारा कदम है वो हमने बढ़ाया है, और इसके तहत सर्वप्रथम हमने क्या किया कि एक ब्रांड लॉन्च किया। हम सब अमूल की बात करते हैं तो अमूल एक ब्रांड है, आप ब्रांड को जानते हैं, आप बाद में जानते हैं कि उसके पीछे 36 लाख महिला किसान जुड़ी हैं, उनसे दूध रोज इकट्ठा होता है, उससे प्रोडक्ट बनते हैं और बाजार में उतरते हैं, और जब कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को अमूल के नाम से जान के खरीदता है तो किसान को फायदा होता है। तो इसी संदर्भ में हमने भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से ब्रांड स्थापित किया। उस ब्रांड के तहत हमने 27 प्रोडक्ट बाजार में उतारे जिसमें मुख्य है आटा, दालें, खांडसारी, चावल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, और इन प्रोडक्ट्स को हमने भारत ऑर्गेनिक्स के नाम पे सभी प्रमुख जो चैनल्स हैं उसमें हमने इनको रजिस्टर करवाया है और इनको मुहैया कराया है। तो आज अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बात करें या बैंगलोर में बात करें, तो जिस भी चैनल पे आप जाएंगे, दिल्ली में आप चाहे सफल के स्टोर में जाएं, चाहे

0: लाइब्रेरी के स्टोर में जाएं, चाहे केंद्रीय भंडार में जाएं, चाहे आप रिलायंस में जाएं, चाहे डीमार्ट में जाएं, या ऑनलाइन शॉपिंग करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, भले ही वो ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, जेप्टो हो, बिग बास्केट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सब पर आप जाएंगे तो आपको भारत ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि सर्वप्रथम तो हमने अपना एक मार्केट एस्टेब्लिश करना शुरू किया जैविक उत्पादों के लिए, अपनी एक साख बनाई। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए 14,000 मेंबर्स हैं और उनके किसान भाई हैं, उनको हमने जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करते हुए उनको जैविक खेती के बारे में बताना शुरू किया है। तो हमारा एक फुल फ्लेज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट है जो कि उनको समय समय पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको कैसे जैविक की ओर बढ़ना है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है।
1: मित्तल साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो किसान हमारे जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे और दालें हो, तो आपकी संस्था से किस तरह जुड़ सकते हैं जिससे अपने उत्पाद को आप तक पहुंचा सकते हैं?
0: इसमें आपको समझना ये जरूरी है कि जैविक उत्पाद जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें ना दो चीजें प्रमुख हैं। पहली तो वो जैविक रूप में उत्पाद की गई हो और दूसरा उसका एक प्रमाणन हो, सर्टिफिकेशन हो। और हिंदुस्तान में दो प्रकार के प्रमाणन चलते हैं, एक एनपीओपी कहा जाता है जिसको कि अपीडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए मॉनिटर करती है, और दूसरा पीजीएस कहा जाता है जिसको कि एनसीओएनएफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत उसको मॉनिटर करती है। तो हमने अभी क्या शुरू किया है कि जो भी किसान या किसान समूह सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हुए हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम के जरिए भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारी वेबसाइट www.ncol.coop पर जाएं और वहां पर अपना पंजीकरण कराएं। ये इतना सुविधाजनक और पारदर्शी हमने बना दिया है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और हमारे इस पंजीकरण व्यवस्था से अपने ग्रुप को पंजीकृत कराएं, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप हमें दे सकते हैं उसकी भी जानकारी हमसे साझा करें। ये जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम ग्रुप्स के साथ में खुद स्वयं पहल कर उनसे जुड़ते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बाजार से अधिक भाव पर, यानी कि जैविक का प्रीमियम देते हुए खरीदते हैं और उनको हम अपने कस्टमर्स तक लेके जाते हैं।
1: मित्तल साहब, एक बार और हमारे किसान भाइयों को बताएं जिससे कि बहुत सारे सुन रहे हैं, नहीं पूरा लिख पाए तो दोबारा भी सुन सकें।
0: जी जी, तो हमारी जो संस्था है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncol.coop। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी और सुविधाएं प्राप्त होंगी। जैसे सर्वप्रथम अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा और आप वहीं पर मेंबरशिप का फॉर्म भर के, वहीं पर पैसे जमा करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी जैविक का प्रमाण पत्र है, तो आप हमारे सोर्सिंग आइकॉन पे जाके वहां पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और जैसा मैंने बताया उस पंजीकरण में आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप हमें देना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं और हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोसेसर हैं, यानी कि आपके पास सुविधा है दालों को मिलिंग करने की या गेहूं का आटा बनाने की या पैडी से राइस बनाने की, तो भी आप अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं किसानों से तो उसकी प्रोसेसिंग भी हमें करानी पड़ती है। इसके अलावा हम रोज का जो हमारा बाजार का भाव है वो भी वहां पर हम बड़ी पारदर्शी रूप में अनाउंस करते हैं, तो आप स्वयं किसान भाइयों जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर कि आज का जो भी आपकी मंडी में मूल्य चल रहा है, मान लीजिए गेहूं का या तूर दाल का, हम उसके ऊपर में जैविक प्रीमियम देकर आपसे खरीदने की मंशा रखते हैं। जी,
1: किसान भाई इससे जुड़ के यानी कि बाजार भाव से अच्छा पैसा आपको मिलेगा, और जो भी हमारे मित्तल साहब कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके मन में ये जिज्ञासा है कि भाई अब हमें पैसा ज्यादा मिले क्योंकि उत्पादन थोड़ा जैविक में कम होता है, इसके लिए किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: तो जैसा मैंने बताया कि जैविक प्रीमियम उसी का नाम है कि हम किसानों को ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, उनकी जो भी बाजार की भाव है केमिकल प्रोडक्ट यानी कि केमिकल द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स के, उससे हम ज्यादा भाव देना चाहते हैं। परंतु मैं इसमें आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने देश भर में काफी किसानों से संपर्क किया है, बातचीत होती रहती है, तो सबका कहना यह है कि जैविक खेती कर उनकी उपज कम नहीं हुई। तो जैविक खेती शुरू में हो सकता है एक या दो साल थोड़ी सी कमी आए, वो निर्भर करता है कि आपकी जमीन किस प्रकार की है, उसमें कितना आप केमिकल ऑलरेडी डाल चुके हैं और उसको कितनी क्षमता हो चुकी है, लेकिन मुख्यतः सभी किसानों ने मुझे बताया कि जैविक से उपज कम नहीं होती, लेकिन फिर भी जैविक का हमें प्रीमियम देना है और हम देंगे और उस वो आप डिजर्व भी करते हैं।

0: तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती करने में मेहनत ज्यादा होती है और जब तक कोई हम एक सिस्टम में बंध गए हैं उससे अगर हम बदलना चाहते हैं तो प्रोत्साहन तो देना ही बनता है।
1: सही कहा मित्तल साहब, और हमारे किसान भाइयों को ये खुशी भी होनी चाहिए कि आपके उत्पाद पूरे विश्व स्तर पर मांग बढ़ती आहिस्ता आहिस्ता जारी है और मांग बढ़ी हुई भी है। मित्तल साहब, अभी तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे की आप क्या योजना है?
0: तो जैसा मैंने कहा कि हमारी मुख्य उपलब्धि बड़ी यंग संस्था है, मात्र 2.5 वर्ष इसको हुए हैं और इस कम अवधि में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि तो यही है कि हम 14,000 किसान संस्थाओं को हमारे साथ जोड़ पाए, जिन्होंने हमें 21,000 रूपये की राशि दी है एज मेंबरशिप फी। तो इतनी बड़ी राशि देकर मेंबर बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब किसानों को जैविक समझ में भी आता है, उसकी जरूरत भी महसूस होती है और उन्हें विश्वास है कि एनसीएल ऐसा कुछ कार्य करेगी कि उनको आने वाले समय में भविष्य में लाभ होगा। दूसरी हमारी उपलब्धि है ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जो है ये हमने रजिस्टर कराया है। जैसा मैंने पहले कहा, इसको हमने सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया है और इसको हम अब जो है उसको प्रसारित कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि घर घर में लोगों को विश्वास हो कि अगर उन्हें शुद्ध जैविक खाना खाना है तो उन्हें भारत ऑर्गेनिक्स ही लेना है। इसके अलावा जो हमारी उपलब्धि कहलाएगी कि हमने ये 27 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और आने वाले समय में हम और करीब 5 से 10 प्रोडक्ट्स हम और लाने वाले हैं, जिनमें मुख्य होगा घी, मखाना, नमक और इसके अलावा मसाले और मिलेट्स, और आने वाले समय में हो सकता है हम खाद्य तेल भी लेके आए, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो कि शुद्ध जैविक रूप से कोल्ड प्रेस रूप से बनाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा हम अभी दिल्ली और बैंगलोर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आने वाले समय में हम पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने वाले हैं, सो वो भी हमारा एक आने वाला प्लान है। इसके अलावा मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही जल्द आपको सब सरकारी स्टोर्स में भी मिलेगा। ऑलरेडी केंद्रीय भंडार में हम अवेलेबल है, मदर डेयरी सफल अवेलेबल है, नाफेड़ में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी बातचीत काफी स्टेट फेडरेशन से चल रही है, हमारी बातचीत आर्मी से चल रही है, हमारी बातचीत पुलिस से चल रही है, तो हमारे प्रोडक्ट्स सब लोग लाइक कर रहे हैं और सब जगह उपलब्ध होते जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी असली सफलता तभी है जब सब किसान भाई हमसे जुड़े और वो कहें कि उनको हमारे आने से, हमारे साथ जुड़ने से लाभ हो रहा है।
1: बिल्कुल मित्तल साहब, आपने सही कहा कि हमारे किसान भी जागरूक होंगे और किसान भाइयों आपको भी बहुत बचत होगी और हमारे देश को भी बहुत बचत होगी। मित्तल साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे अतुल भाई, ये बातचीत सहकारी जैविक समितियों द्वारा किसानों को क्या लाभ हो सकता है, इसमें बातचीत कर रहे थे विपुल मित्तल से पीएस भाटी।
3: और देखिए अब भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं मोमराज की आवाज में ये उपदेश।

पायल बहना भी हमारे भाई सुन रहे थे मामराज सिंह की आवाज में ये उपदेश। और चलते चलते एक और रागनी सुनवाते हैं मामराज सिंह की ही आवाज में अपने सभी किसान बहन भाइयों को।

तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे मोमराज सिंह की आवाज में ये रागनी। और अब समय हो चला है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ज पर। सात बजकर 30 मिनट हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गजल और कव्वाली। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। आई श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

नाराजगी से भरे चेहरे ने साफ जाहिर कर दिया मेरे चेहरे की हर एक लम्हा में मोहब्बत दिखाना उन्हें नागवार गुजरा। कहीं तो मोहब्बत का ऐसा आलम और कहीं कि मोहब्बत की शुरुआत कुछ इस तरह कीजिए कि लबों पर नाम हमारा हर वक्त नजर आना चाहिए।

मोहब्बत करना और निभाना दोनों ही बहुत ही जरूरी है। आज ऐसे मोहब्बत जहां मोहब्बत की मोल समझ में आए कम ही दिखते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, यूं मोहब्बत कीजिए कि मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए, यूं मोहब्बत कीजिए कि मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए, गम चाहे कितना भी मिले मोहब्बत बढ़ती जाए।

0: आकाश में दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक में समाचार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रणनीतिक संकल्प और राष्ट्रीय दृढ़ता का निर्णायक प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये वो दिन था जब भारत के जवानों ने आतंकवाद को अभूतपूर्व शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ करारा जवाब दिया। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस राशि से द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, संकाय आवास और आधुनिक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 250 MBBS सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित

0: छिटकी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 150 छात्रों के साथ शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक और टिकाऊ निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे बिल्डिंग को भूकंप से सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना केवल एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस पहल से 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
3: 40 साल से ऊपर के सभी श्रमिकों का निशुल्क चिकित्सा परीक्षण भी होगा और इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है, और दिल्ली सरकार इसमें आगे बढ़ते हुए अपना भी योगदान करेगी। तो साइट्स पे जहां श्रमिक काम कर रहे हैं, जो उनके घरों में जाकर भी चिकित्सा परीक्षण हो जाए अगर कोई अस्पताल तक नहीं आ सकता, और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार इस योजना में अपना हिस्सा जोड़ेगी।
1: राजधानी में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वारोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। जन स्वास्थ्य विभाग के 4,100 एमटीएस कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 121 लाख से अधिक बार घरों का दौरा कर मच्छरों के प्रजनन की जांच की। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने आज शाहदरा उत्तर जोन के दिलशाद गार्डन और झिलमिल क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निगम समूह ने सड़क निर्माण, नाली विकास, पैदल यात्री बुनियादी ढांचे और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निगम ने गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था, निर्माण और विध्वंस कचरे की नियमित निकासी और शौचालय ब्लॉक तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं के बेहतर रखरखाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आदेश जारी किए। साथ ही अधिकारियों को आश्रय स्थल की मरम्मत कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। संचार मंत्रालय ने बताया कि इसे आधुनिक वास्तुकला, बेहतर ग्राहक संपर्क क्षेत्र और डाक विभाग के आधुनिकीकरण के अनुरूप बनाया गया है। नए डाकघर में बेहतर पहचान, विशिष्ट दृश्य, बेहतर ग्राहक इंटरफेस और आधुनिक इंटरफेस जैसी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट हर साल लगभग 7,50,00,000 पार्सल और 90 करोड़ डाक वितरित करती है। श्री सिंधिया ने बताया कि 4 वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 13 करोड़ ग्राहक जुड़ गए हैं और डाकघर बचत बैंक में 23,00,000 करोड़ रुपए जमा हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि डाकघर जनसेवा का सशक्त माध्यम है।
4: भारत देश में अगर रक्त का संचार हृदय के रूप में कोई विभाग करता है तो मेरा डाक विभाग करता है। 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, अनुमान लगाओ 6,50,000 गांव हमारे देश में, हर 4 गांव में कम से कम एक डाक विभाग तो है, और जहां डाक विभाग डाकघर ना हो वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको मिलेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि डाक विभाग देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट ने पत्रों और पार्सलों से आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण, सुशासन और नागरिक सेवाओं को सक्षम बनाने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई

0: तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी सेवाओं के एकीकृत होने के बाद प्रत्येक डाकघर अब जनसेवा केंद्र बनकर उभरा है, जिन्हें अब जनसेवा केंद्र का नाम दिया गया है।
1: हमारे पोस्ट ऑफिसेज केवल एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के तक सीमित नहीं है। आज हमारे पाल से लेकर के बैंक बचत तक हर तरह की सुविधाओं से उसमें हमने आधार कार्ड जोड़ा, उसमें हमने पासपोर्ट सर्विसेज जोड़ी। इस सबके जोड़ने के बाद जिस तरीके से आज हमारा हर पासपोर्ट ऑफिस जो है वो जन सेवा का केंद्र बन चुका है।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में 1600 से अधिक नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि यह पहल दिल्ली के लिए कुशल कार्यबल के निर्माण में पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उन्होंने बताया कि ये युवा सदस्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अमृतकाल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: हमारा कंट्री एक यूथ का कंट्री है, तो प्रधानमंत्री जी ने काफी बारी कहा है कि विकसित भारत में यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ज्यादातर यूथ हमारा फ्यूचर है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई। इनमें नकली टीके, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटी सीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। अपराध शाखा ने इंदिरा विकास कॉलोनी में छापेमारी में अवैध दवा निर्माण इकाई का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस आयुक्त पंकज सिंह ने बताया कि बरामद की गई कुछ दवाइयां सरकारी आपूर्ति के लिए थीं, जिन्हें दोबारा पैक करके निजी बाजार में बेचा जा रहा था।
3: इंदिरा विकास कॉलोनी में एक रेड की और जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने एक बस्ट की, जिसमें ये पता चला कि इसमें कई टाइप की दवा है। कुछ दवा ऐसी भी मिली जो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए थी और इनको ये रीपैकेजिंग करके प्राइवेट मार्केट में बेचता था।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच के मद्देनजर राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कल से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित करेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक माह से अधिक तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैलियों और रंग रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य नाटकों में बायेन, ताजमहल का टेंडर, बंद गली का आखिरी मकान, मायरी मैं का से कहूँ, तमस, अंधा युग, बाबूजी, आधे अधूरे और समुद्र मंथन शामिल है। साथ ही दर्शक इन प्रस्तुतियों के टिकट ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महोत्सव का उद्घाटन रंग मंडल की नवीनतम प्रस्तुति तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। महोत्सव का समापन अगले महीने की 14 तारीख को समुद्र मंथन नाटक के साथ किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: मिजोरम और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग ने कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में

नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका का। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

अपने समय का सुपरहिट गाना आज की फिल्म से अनुराधा पौंडवाल और कुमार सानू की आवाज में। कहते हैं कि मोहब्बत से जुड़ी हर बातें, हर किस्से बहुत ही अहम होते हैं और वो पुता उम्र याद भी रहते हैं। पहला मोहब्बत, उसके एहसास और उसके जज्बात कई गीतों में, उसके बोल में बहुत ही खूबसूरती से ढाला गया। उन खूबसूरत गीतों में एक गीत ये है जो अभी आप सुनेंगे। और पहले मोहब्बत की जब बात होती है तब जितने भी गीत बने वो सारे के सारे हिट हुए। ये गीत भी हिट है, हालांकि फिल्म उतनी हिट नहीं हुई, लेकिन गीत के कारण फिल्म को आज भी याद किया जाता है।

इस गीत में, इस गीत की खूबसूरती, इस गीत के बोल और साथ साथ इसकी म्यूजिक, सब कुछ बेहतरीन। फिल्म हम हो गए आपके, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक। ऐसे ही एक गीत और भी है जिसमें अपने मन की बात कुछ यूं कहा गया है, जहां दिल की बात भी निकलकर सामने आ रही है और साफ साफ बोल दिया गया कि हमारी हसरत है आपसे दिल लगाने की। गीतों के ये बोल गीत को हिट बनाते हैं। ये फिल्म हिट भी रही, इसके गीत भी हिट रहे। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म सैनिक से आपने इस गीत को सुना, स्वर कुमार सानू और साधना सरगम। गीतों की ऐसी झड़ी आई थी, एक वक्त ऐसा हुआ था जब सारे के सारे गीत हिट हो रहे थे और सारे के सारे रोमांटिक गीत बनने लग गए थे। वो समय था 80s और 90s का। उस वक्त जितने भी फिल्मों में जो भी गीत आ रहे थे वो सब हिट हो रहे थे और एक से बढ़कर एक। उनमें से कई ऐसे थे जो बिल्कुल नौजवान और कहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए वो गीत बने, और उन गीतों में ऐसा कशिश था कि फिल्म को भी उसने हिट कर दिया। उसी में से आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम पूजा भारती के साथ। और गीतों में वो गीत जो एक जमाने में बिल्कुल हिट रहे, और जैसे आपने अभी जिस गीत को सुना फिल्म दिल से, उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में, इन गीतों में एक ऐसा कशिश था कि उस वक्त फिल्म हिट हुई सबसे ज्यादा गीतों की वजह से। ऐसे में और भी कई फिल्में आई उसी वक्त में, लेकिन फिलहाल उन गीतों का सिलसिला जो उस वक्त हिट हुए थे उनमें से एक गीत थोड़ा सा हट के, लेकिन मोहब्बत से बढ़कर, यानी कि मोहब्बत ने अपनी चूड़ी की खनक से किसी को पुकारा है। गीतों का ये एक और सिलसिला यहां से शुरू होता है, आइए सुनते हैं।

बात हो रही थी जिस वक्त फिल्म दिल आई, उस वक्त फिल्म एक और ऐसी भी आई थी जो बिल्कुल दिल फिल्म के साथ अपने कदम से कदम मिला रही थी, और वही हिट, वही गाने, और साथ ही साथ वही जज्बात जो यंगस्टर्स के दिलों में होते हैं, उन सबको उकेरा था इस फिल्म ने भी। इस फिल्म का भी गीत सुनते हैं आइए। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब फिल्म संगीत के कार्यक्रम में गीतों का वो सिलसिला चलता है जब एक सुर पकड़ता है, जब मोहब्बत, पहले मोहब्बत और उसके एहसास की बात होती है, तब ऐसे ऐसे गीत जो अपने शब्दों के कारण, अपने म्यूजिक कारण हिट हुए और उसने फिल्म को भी हिट कराए, तो उन गीतों में सबसे अहम भूमिका होती है कि उस फिल्म की जो कहानी है वो उसे गीतों से मेल खा रही है कि नहीं। और ज्यादातर फिल्में, या कहें तो सारी फिल्में ऐसी बनती हैं कि जो गीत फिल्म की स्टोरी से मेल खा रही हो, लेकिन जब ऐसी गीत जो लगता है कि वो फिल्म के लिए ही तो बनी है, उसे इस फिल्म के लिए ही तो बनाया गया है, उन गीतों में से ही सारे गीत आज आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म और उसके गीत एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पूरक है, ऐसा प्रतीत होता है, और यही एक कारण है ये सारे गीत हिट हुए थे।

फिल्म कयामत से कयामत तक से आपने सुना इस गीत को, आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण। फिल्म संगीत गीत मालिका आप सुन रहे हैं पूजा भारती के साथ, और फिल्म संगीत में वो गीत जो अपने जमाने के सुपरहिट रहे। अभी आपने सुना जिस गीत को इसके बोल भी उस वक्त बहुत सराहा गया, और अब जो आप सुनेंगे ये गीत भी अपने आप में लाजवाब है। फिल्म परिंदा से आप सुनेंगे इस गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार, समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत

0: यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता

0: हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते है। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
2: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system.

रात 11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम नशर किया जाएगा। 11:45 पर बज़्म मौसीकी प्रोग्राम के तहत सुनिएगा उस्ताद यूनुस खां का गाया राग मारू बिहाग। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी।

0: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक फनकार। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:45 होने को हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला अफवाज की जुरत, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगी, जो 40 साल कदीम प्लेटफार्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्विनी वैष्णव ने हुकाम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वियतनाम के सदर टो लैम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। और तीरंदाजी में भारत की खवातीन टीम ने शंघाई में सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को हराकर आलमी कप के दूसरे मरहले में मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला अफवाज की जुरत, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पिछले साल आज

के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फिजाई हमले किए गए थे, जिनमें कम से कम 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। ये कार्रवाई पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले पाकिस्तान की पुश्तपनाही वाले मुबैना दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भारत की मौसर कार्रवाई थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने अपने पैगाम में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी और कौमी सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ मुल्क के गैर मुतजलजिल अज़्म की अलामत करार दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी और मुल्क की खुदमुख्तारी और शहरियों की हिफाजत को खतरे में डालने वाली ताकतों के खिलाफ भारत के पुख्ता अज़्म का वाज़ह सबूत है। मुहतरमा मुर्मू ने कहा कि आज मुल्क अपने फौजियों की गैर मामूली बहादुरी, कुर्बानी और पेशावराना सलाहियतों को सलाम पेश करता है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक फैसलाकुन लम्हा करार दिया, जब भारत ने अमन, इतिहाद और खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली दहशतगर्द ताकतों और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही करने वाले मुल्कों के खिलाफ मुअसर कार्रवाई की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क दहशतगर्दी और उसके मुआविन निज़ाम को ख़त्म करने के अपने अज़्म पर कायम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने इस कार्रवाई के दौरान बेमिसाल जुरत, दुरुस्तगी और अज़्म का मुजाहरा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफवाज ने उन अनासिर के खिलाफ मुअसर कार्रवाई की जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह भारतीय शहरियों पर हमला करने की जुरत की थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पूरा मुल्क मुसल्लह अफवाज की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखला अमित शाह और इतलात व नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। भारत ने आज कहा कि उसने सरहद पार की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने के लिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरहद पार की दहशतगर्दी को तवील मुद्दत से मुल्क की पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गैर कानूनी बांग्लादेशियों की वतन वापसी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि कौमियत की तौसी के 2800 से ज्यादा मामलात बांग्लादेश के साथ इल्तवा में हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर क्याम पजीर किसी भी बैरूनी बाशिंदे को मुल्क के कवानीन जवाबित के मुताबिक उसके वतन वापस भेजा जाना चाहिए और इसके लिए बाहमी तरीक़ाकार और बंदोबस्त कायम करने चाहिए। नई सरकार तश्कील देने की तैयारियों के माबैन मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया है। गवर्नर आर एन रवि ने आईन की दफा 174 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आज मौजूदा असम्बली को तहलील करने के अहकाम जारी किए। यह इकतदार की तब्दीली में एक नुमाया इकदाम है, क्योंकि रियासत सनीचर के रोज हलफ बर्दारी के जरिए नई सरकार की तश्कील की जानब पेशरफ्त कर रही है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के एमएलए सुवेंदु अधिकारी के करीबी साथी चंद्रनाथ रथ के कत्ल के सिलसिले में रियासती पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक 7 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी भी तश्कील दी है। ये टीम सीआईडी के इंस्पेक्टर जनरल के तहत काम करेगी। इसी दौरान पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में सिलीगुड़ी की एक रिहायशी को हिरासत में लिया और तहकीकात की। तमिलनाडु में सियासी तातुल के माबैन नई सरकार तश्कील देने के लिए बातचीत जारी है। इस सिलसिले में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने आज चेन्नई में टीवीके के सदर सी जोसेफ विजय को लोकभवन मदऊ किया। लोकभवन से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मीटिंग के दौरान गवर्नर ने यह बात वाजे की कि तमिलनाडु कानून साज असेंबली में मतलूबा अक्सरियती हिमायत जो सरकार तश्कील देने के लिए लाजमी है मौजूद नहीं है। केरलम के नए वजीर आला के बारे में फैसला नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के जरिए किया जाएगा। वो ये फैसला एआईसीसी मुशाहिदीन के जरिए पेशकर्दा रिपोर्टों पर सलाह मशवरे के बाद करेगी। केपीसीसी के सदर सन्नी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर को मुंतखब करने के लिए एआईसीसी के सदर को इख्तियार देने की एक करारदाद को आज सुबह
تھیرووننتھ پورم میں منعقدہ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں متفقہ طور پر

0: मंजूरी दी गई। रेलवे की वजारत ने आज ऐलान किया कि ट्रेनों की अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में मुंतकली का आगाज अगस्त में होगा। नई दिल्ली के रेल भवन में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हुकाम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि 40 साल कदीम रिजर्वेशन निजाम से अपग्रेडेड निजाम में ट्रेनों की मुंतकली के दौरान मुसाफिरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम के सदर लो तैम ने जोर देकर कहा है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के लिए अहम मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने माजी में बाहमी इश्तराक व ताउन के जरिए बहुत से चैलेंजों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों बिलखसूस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने वाली कंपनियों को वियतनाम में सरमायाकारी करने के लिए मदद किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वसी ताल्लुकात को उजागर करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी एतमाद के सबब 2016 से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद वियतनाम के साबिक सदर हो ची मिन और भारत के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जैसे दूर अंदेश और बसीरत अफरोज रहनुमाओं ने रखी थी। इंडिया एआई और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने आज नई दिल्ली में सेहत के शोबे में जिम्मेदाराना मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि यह शराकतदारी मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना और वसी तर इस्तेमाल से सेहत के शोबे में अच्छे नतीजे की जानिब एक अहम कदम है। चीन के शंघाई में आज तीरंदाजी में भारतीय खवातीन रिकर्व टीम ने आलमी कप के दूसरे मरहले के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की 10 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम पर शानदार जीत हासिल करके मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बना लिया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर इतवार को होने वाले सोने के तमगे के मुकाबले के लिए जगह बना ली, जबकि तरुण दीप राय, धीरज बोमा देवरा और यशदीप भोगे पर मुश्तमिल भारतीय मर्दों की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 2-6 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला अफवाज की जुरत, अज्म और अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असेंबली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरला में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगी। वियतनाम के सदर लो टो लैम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं और तीरंदाजी में भारत की खवातीन टीम ने शंघाई में सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को हराकर आलमी कप के दूसरे मरहले में मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। और लीजिए समय, अब सुनिए सेहत के हवाले से कुछ बातें। प्रोग्राम है हेल्थ टिप्स।

जी हाँ दोस्तों, कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत आपकी खुशहाली की पहचान है। सेहत अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। हालांकि खातून पूरे खानदान की सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को नजरअंदाज कर देती हैं। एक खातून एक मां है, एक बीवी है, पूरे खानदान की जिम्मेदारी है उस पर, लेकिन वो भागती दौड़ती जिंदगी में अपने आप को भूल जाती है। आप भी अगर एक खातून हैं तो दूसरी तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना है।

सेहत के साथ साथ सीरत भी अच्छी हो और सूरत भी, यानी आपको दिखना भी अच्छा है, गुड लुकिंग होना भी जरूरी है। ऊपर वाले ने आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है, उस पर लिखान निखार लाना आपकी जिम्मेदारी है। खासतौर से खवातीन इस जानेब अब ज्यादा रुझू होने लगी है, यह अच्छी बात है। आज हम आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपनी जिल्द को निखार सकते हैं। यूं तो हर पल अपनी खासियत रखता है, लेकिन आज हम जिन फलों का जिक्र करेंगे वो जिल्द के लिए हैरत अंगेज फायदे रखते हैं। कौन से हैं वो फल, ये बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

0: जी असमाई, तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फलों के बारे में जो आपकी जिल्द को निखारने में हैरत अंगेज फवायद रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कीवी। ये फल खुश रंग और खुश जायका होता है, बल्कि गजाइत से भी भरपूर होता है। एंटी एजिंग फल भी है, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, कॉपर, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीज से भरपूर है। ये फल इसमें मौजूद विटामिन सी और जो 85% होता है, रोजमर्रा के विटामिन सी की जरूरत को बआसानी पूरा कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और विटामिन ई जिल्द के मुर्दा खलियों से निजात दिलाने के साथ साथ जिल्द को तरोताजा और जवान रखने में मावन है। अनार, एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इस अनार के बेशुमार फायदे हैं, हम सभी जानते हैं। इस अनार में विटामिन सी कसरत से पाया जाता है। गर्मी में अनार के जूस का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द को बेदाग, तरोताजा और तवाना बनाता है। एवोकाडो, इस फ्रूट का शुमार सेलिब्रिटी फ्रूट में किया जाता है। इस फल में चिकनाई, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट कसरत से पाए जाते हैं। ये तमाम अज्जा जिल्द की मॉइस्चराइजिंग, धूप से झुलस जाने वाली जिल्द के लिए मुफीद हैं। अब आता है ग्रीन एप्पल। अगर आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं या चाहती हैं, तो हरे सेब का इस्तेमाल करें। सेहत के लिए हरे सेब के बहुत से फायदे होते हैं, साथ साथ ये खूबसूरती के लिए भी अहम फल माना जाता है। जिल्द को पुरकशिश रखने के साथ साथ ये फल आंखों के नीचे से हल्के भी खत्म करता है। पपीता, जिल्द की ताजगी के लिए पपीते का मास्क का इस्तेमाल खवातीन में खासा मकबूल है। गजाई माहरीन के मुताबिक पपीता जिल्द को दिलकश बनाता है, इसके अलावा बालों को भी चमकदार बनाता है। तो समाइन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। किसी और दिन कुछ और सेहत से जुड़ी बातों के साथ फिर हाजिर होंगी। हेल्थ टिप्स का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए समय, अब सुनिए प्रोग्राम हरफे सुखन।
1: हरफे सुखन के सामने को आधा वर्ष किसी दिलजले शायर ने क्या खूब कहा है, खुशी का क्या है कोई पल में रूठ जाएगी, ये गम के रात तो ऐ दोस्त जावेदानी है। तो दोस्तों, गम एक ऐसा जज्बा है जो तमाम जज्बात इंसानी के मुकाबले में ज्यादा देर पा और जूद असर वाक़ हुआ है। खुशी और इंबिसात हमारी जिंदगी में लम्हाती असर मुरतब करते हैं, जबकि गम रूह की गहराइयों में उतर जाता है। खुशी के मुकाबले में गम जावेदा होता है, जब किसी को नसीब हो जाता है तो फिर उसकी जिंदगी का नागुजीर हिस्सा बन जाता है, और जब गम अल्फाज का कालिब ढालता है तो ऐसी शायरी वजूद में आती है जो हमारे जज्बात और एहसास की तर्जुमानी ही नहीं करती, बल्कि हमारी एक हमदर्द देरीना का किरदार भी अदा करती है। और गम से शराबोर ये शायर जब किसी की पुरसोज आवाज के सहारे नगमे में ढलकर हमारे कानों से टकराती है तो कल्ब जिगर को खून रुलाती है। नगमे का जेरो बम हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। गजल के सांचे में ढले शायर के जज्बात सुनने वाले की रूह को आसूदगी फराहम करते हैं। उर्दू की गजल

0: तोरे द्वारे खड़े।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा था फिल्म कोहिनूर का। नगमा निगार थे शकील बदायूनी और मौसीकार थे नौशाद। सुनने की फरमाइश थी आप सबकी आकोर से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, शुभम बेंडे और इनके बहुत सारे साथी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। सार्थ समर्थ डेठे, भागवत डेठे और श्रीमती लक्ष्मी डेठे पाटिल, ये महाराष्ट्र से फरमाइश आई थी। शास्त्री नगर बीट शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल और साईराज सपकाल। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश की फरमाइश आई थी। जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख फारूक शबनम और शहनाज। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चंद फारूक। ज्ञानेश्वरी अनिकेत झिंझुरू के, लक्ष्मण झिंझुरू के, रोहिणी झिंझुरू के और ज्ञानेश्वरी झिंझुरू के। नवरंग मार्केट शिवगांव महाराज से फरमाइश आई है। रमेश कुमार यादव, माया यादव और कोमल यादव। मंगल जनागल राई, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल और इनके बहुत सारे साथी। चक 5 एमडी पतौड़ा से। और ये हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। सादुर शहर से राजस्थान से राज राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। अगली फरमाइश आई है भाई मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन, कार्तिक, सिटी सेंटर खंडवा से। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से हैं गजानंद येले, नवदीप येले और अशोक येले। और समय अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म फूल बने अंगारे का। आवाज मुकेश की, नगमा निगार है आनंद बख्शी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। सुनने की फरमाइश आप सबकी है। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानंद येले, नवदीप येले और अशोक येले। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर।

ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय की फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय की फरमाइश आई है गाजीपुर से। इसी नगमे को सुनने की फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरमिंदर चावला सोनी रोश जोशी और शिव कुमार शर्मा की। बेंगलुरु से हैं भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूल वाले, सदा फारजू फूल वाले और लखमनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन निजाम झारखंड से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता और गीता। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसी उतासु। और बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ। गंजुनवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा और अदनान खान। पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और डी के अलवी। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। और मलकापुर से ये हैं प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति संजय कुमार और इनके बहुत सारे साथी। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश कुमार। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधाना रिधान खुराना। तो लीजिए समय, सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे, आवाज मुकेश की।

0: और इसी गीत के साथ ये जो गीत बहार फिल्म म्यूजिक का नॉन स्टॉप कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद

0: आग को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces have fitting response to those who dare to attack innocent Indians.

कार्यक्रम गजल गीत में आप बने हुए हैं चेतन कुमार शर्मा के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल जिसको संगीत और आवाज दी है निहारिका सिन्हा ने।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम गजल गीत में आप हैं चेतन के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

कार्यक्रम गजल गीत आप सुन रहे हैं ईआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक और भी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह।

0: मिताली और भूपेंद्र सिंह के स्वर से सजे इसी गजल के साथ ये आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20:10। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं सीरा गांजी एस गोविंद राजन का गायन। राग है कल्याणी।

0: ஒரு
1: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सीर गजा है एस गोविंदा राजन का गाया राग कल्याणी। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता होंगे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। स्वर रंजनी के कार्यक्रम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी

संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुनेंगे करण किशोर मिश्रा के भजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा 7:30।

सुबह 8:45 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे इंदिरा मुखर्जी का गायन, राग होगा मिश्रा भैरवी और दादरा राग मिश्रा पीलू। गांधी चर्चा कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:15, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे आर एस सुंदरम।

सदान रहत दान बवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सारे साहिब जी दे दर्शन इशरान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल

0: सेवा करे तो सही तो आप ऐसी सोच सेवक सेवा करे जिसको हुक्म बनाए सी हुक्म ले प्रवाण तक अपने काम मिल पाए सी कस में भावे सो करे मन कंदे सो फल पाए सी दरगे पैंदा जाए सी
1: कोई गावे रागी ना दी बेदी बपात कर नहीं हर हर

0: पहला पानी जीव है जित हरिया सब को सोतक लोट कर रखी है सोतक पवे रसोए नानक सूत के उतरे नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ये महला पे
1: मन का सूत लोभ है जेवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना परतर परतन रूप कन्नी सूत कन पे लगत बारी खाए नानक साधवी बदे जमपुर जाए महला पहला
0: सब सूत को परम है दूजे लगे जाए जमन